नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पारमेलिन से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रूस कई ऐसे अवसरों पर भारत के साथ खड़ा रहा जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश के सैन्य तानाशाह का समर्थन कर रहे थे, तब रूस ही ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत

प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहित व्यापार और निवेश के क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध हैं। भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। पांच दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। समारोह सुबह 11 बजे बोगीबील टर्मिनल पर आयोजित किया जाएगा। पहली खेप में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित मेथेनॉल बांग्लादेश के ढाका स्थित पानगांव बंदरगाह ले जाया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर पारिवारिक पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तर वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आरंभ इस पहल का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ नशा मुक्त जीवन शैली को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा। कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की। भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर आज से ओटावा में शुरू करेंगे। फ्लाई दुबई फ्लाइट के ओमानी सह पायलट ने विमान अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने की कोशिश की थी। और भारत ने जापान एशियाई खेलों में क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में स्वर्ण के साथ 85 पदकों पर अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। दोनों नेता व्यापार, निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार, आवागमन, संस्कृति और जनसंपर्क सहित कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस दौरान बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा होगी।
1: इस वर्ष फरवरी में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। इस यात्रा का महत्व इस दृष्टि से और बढ़ जाता है कि वह इस महीने की 7 तारीख को दूसरे भारत EFTA प्रॉस्पेरिटी समिट में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। EFTA देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश साझेदार है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंध है। राष्ट्रपति की इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही आपसी हित के नए क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना करेंगे। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे।
2: आज इस मालवाहक यात्रा के शुभारंभ के साथ ही डिब्रूगढ़ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग व्यापार केंद्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता पूर्व विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाएगा। 8 दशकों से अधिक समय के बाद पहली बार असम से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय माल खेप रवाना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज सुबह 11 बजे इस कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली खेप में नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड द्वारा उत्पादित 1080 टन मिथेनॉल भेजा जा रहा है। 2 नवीनीकृत मालवाहक पोत इस खेप को

0: बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। डिब्रुगढ़ से जादव गोगोई के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। उत्तराखंड, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और लक्षद्वीप में आंधी तूफान के साथ बारिश और बिजली चमकने का अनुमान है। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम के ऐसा ही रहने की उम्मीद है। उधर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच लखनऊ जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। गोमती नदी के निचले इलाकों में लखनऊ शहर के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिलाधिकारी और संयुक्त पुलिस आयुक्त ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए तत्काल 10 नाव तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र, निरंतर प्रतिबद्धता और सुशासन से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज बात एक जिला एक उत्पाद पहल की।
3: मिजोरम के अधिकारियों ने बताया है कि लुंगलेई जिले में केले की खेती करने वालों ने केंद्र की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत केले से बने उत्पादों से लगभग 3,78,00,000 रुपए कमाए हैं। लुंगलेई के लिए केले को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद के तौर पर चुना गया है। राज्य सरकार इसकी खेती को बढ़ावा दे रही है और केले से चिप्स, जूस और खाने की दूसरी चीजें बनाने के लिए प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा दे रही है। लुंगलेई की उपायुक्त नवनीत मान ने बताया कि केले की फसल को तब चुना गया जब जिला प्रशासन ने बागवानी विभाग के साथ मिलकर जिले की खेती की क्षमता का अध्ययन किया और पाया कि इस इलाके में केले की अच्छी पैदावार होती है।
4: हमारे जिले में केले की खेती की बहुत संभावना है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए हमने ऐसे नए उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना शुरू किया है जो केले से बनी चीजों जैसे केले का जूस, चिप्स और केले के फूल में मूल्य संवर्धन का काम कर रहे हैं। हम उन्हें ट्रेनिंग, मार्केटिंग और पैकेजिंग में भी मदद दे रहे हैं।
3: उपायुक्त ने ये भी कहा कि प्रशासन किसानों को केले से बने उत्पाद बेचने में मदद करने के लिए बड़े सरकारी कार्यक्रमों में स्टॉल भी लगाता है। फिलहाल लुंगलेई जिले के लगभग 17 गांवों में केले की खेती हो रही है जिसमें करीब 300 से 400 परिवार शामिल हैं। आइजोल से आइजक जोरम सांगा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: भारत और कनाडा आज से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत का 5वां दौर शुरू करेंगे। दोनों देश इस व्यापार समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। चौथे दौर की वार्ता 18 सितंबर को नई दिल्ली में हुई थी। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस समझौते को दिसंबर तक अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा था। इटली के अखबार कुरियेरे देला सेरा की रिपोर्ट के अनुसार फ्लाई दुबई विमान के ओमानी सह पायलट ने विमान के अपहरण की साजिश नाकाम होने के बाद उसे सऊदी अरब के रेगिस्तान में गिराने का प्रयास किया।
5: रिपोर्ट में इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि अल हमामी की मूल साजिश कैप्टन स्मिथ मच्छर की हत्या कर विमान को इजरायल के तल अवीव ले जाकर वहां किसी गगनचुंबी इमारत से टकराने की थी। उसने ऑटो पायलट बंद कर विमान का नियंत्रण अपने हाथ में लिया। करीब 30 सेकंड में विमान 16,000 फीट नीचे आ गया और जमीन से टकराने की स्थिति में पहुंच गया। उसने विमान के नियंत्रण तंत्र को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की लेकिन यात्रियों ने उसे काबू कर लिया। इसराइल ने इस घटना को आतंकवादी हमला बताया और इस बात की जांच कर रहा है कि ओमान के पायलट को तल अवीव जाने की अनुमति कैसे मिली, जबकि इजराइल और ओमान के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और इजराइल की सुरक्षा नीति के तहत इस तरह की

0: उड़ान की अनुमति नहीं है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। इस दौरान 2030 के एशियाई खेलों के मेजबान कतर को खेलों की मशाल और ध्वज सौंपे गए। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
2: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से आईईडी विस्फोटों से प्रभावित लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं।
3: बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद इन विस्फोटों में हमने महत्वपूर्ण अंग गंवा चुके दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक और दंतेवाड़ा में 15 से 17 अक्टूबर तक निशुल्क शिविर लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों के लिए शिविर स्थल पर आने जाने के लिए निशुल्क परिवहन के साथ भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। आकाशवाणी समाचार रायपुर।
1: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा मंच माय भारत के माध्यम से कल देश भर में 150 से अधिक स्थानों पर नशा मुक्त युवा के लिए नशा मुक्त मार्च का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1,00,000 से अधिक युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद प्रियंका। भारत द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को जनसत्ता सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। बकौल दैनिक जागरण, विदेश मंत्री ने कहा हाल में भारत सिर्फ पैरवी करने से परे जाकर थोड़ा और अधिक जुड़ा है। जीएसटी में गिरफ्तारी के अधिकार पर लगाम, नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि जीएसटी परिषद की इस सप्ताह बैठक में कर अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी भी गिरफ्तारी के लिए अदालत की मंजूरी को अनिवार्य किया जा सकता है। भारत 20 और देशों में डिफेंस विंग स्थापित करेगा, बढ़ेगा रक्षा निर्यात, हिंदुस्तान ने लिखा है। इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता समेत विभिन्न वैश्विक मंचों पर समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। कैप्टन स्मिथ दुनिया के हीरो, प्रधानमंत्री मोदी संग इसराइल आमंत्रित, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन बेंजामिन नेतन्याहू की भारतीय पायलट स्मिथ से फोन पर की गई बात और सराहना को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया है। उधर दैनिक भास्कर ने कैप्टन स्मिथ पर हमला करने वाले को पायलट के बयान को दिया है। को पायलट ने कबूला, विमान क्रैश कराना चाहता था। जापान में संपन्न एशियाई खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत के 21 स्वर्ण पदकों में से 14 में रही बेटियों की भागीदारी, 24 साल बाद

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। अरे उठ जाओ मेरे मुंबईकर्स, क्योंकि सिर्फ सूरज ही नहीं, आपके शहर की रफ्तार भी अब जाग चुकी है। देखो लोकल ट्रेनें दौड़ रही हैं, मरीन ड्राइव पर चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, और आपके अपने रेडियो पर आ चुका है आपका हम सफर। जी हाँ, 107.1 FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई शो, और मैं हूं आपके दिलों की धड़कन को पहचानने वाला आपका मनमीत आरजे अमित। तो चलिए आज सुबह सुबह ताजा खबरें क्या है, आज के दिन की खास बात क्या है, सब कुछ बताऊंगा। मगर पहले 8657661071 पर मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं। यही बात मैं इस गाने के जरिए कहूं तो क्या कैसे कहूंगा, बड़े अच्छे लगते हैं यार। आपके बिना हमारे सारे शो अधूरे हैं, आपके लिए ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहूंगा अमित कुमार की आवाज में। कीप लिसनिंग 107.1 FM रेनबो।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले। कॉस्मोस कार लोन है ना?
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

किसी ने बड़ा सच ही कहा है, दुनिया की इस भागदौड़ में हमें कई सारे लोग मिलते हैं, कभी कभी कुछ पलों के लिए, कभी कभी बहुत देर के लिए, मगर कभी कुछ पलों के लिए मुलाकात के बाद भी वो बड़े अपने लगने लगते हैं, है ना? आपके साथ कभी ऐसे हुआ है? बताइए मुझे 8657661071 पर। कुछ ही पलों में जान लेंगे 5 अक्टूबर की खास बातें। तब तक किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान का ये गाना हम आपको सुनाना चाहेंगे।

कौन आए कौन कब उठ जाए इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, मगर आज 8:52 हो चुके हैं। धीरे धीरे समय की ये घड़ी जो है ना वो आगे बढ़ रही है, ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी आगे बढ़ते रहता है। मगर हाथ में चाय की चुस्की के साथ अगर सुबह आपका मनमित आरजमित को सुन रहे हो FM रेनबो पर मस्त मुंबई में, तो कई सारे लोगों के मन में ये बातें रहती है ना, अरे यार आज हम गाने तो सुनेंगे, गानों के साथ साथ बातें क्या होगी। तो इन सभी बातों के संग कभी खेल की बात है, कभी ऐतिहासिक बात है, कभी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई कुछ हस्तियों की बात है, तो कुछ ऐसी जो आपके और हमारे जीवन को स्पर्श करती है और बतलाती है कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को नजरअंदाज करना सही नहीं है। मगर ये तभी होगी ना जब आपका हमारे जीवन में आना होगा, और अगर आप जैसे लोग हमारे जीवन में आ जाए तो बात तो बनती है।

हैं, इसलिए आपके लिए कहना चाहेंगे कि जिंदगी लहर थी, आप साहिल हुए, न जाने कैसे हम आपके काबिल हुए, न भूल पाएंगे हम इस हसीन पल को जब आप आरजे अमित की जिंदगी में शामिल हुए। लीजिए ये गाना रफी साहब की आवाज में।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई प्रोग्राम आपका मनमीत आरजे अमित के संग। दोस्तों देखिए, आज सुबह सुबह की ताजा खबर तो यह है कि मुंबई के मौसम ने फिर से करवट ली है। कल रात को क्या आपको ठंडी हवाएं महसूस हुई? मुझे तो हुई भैया। ठंडी हवाओं के साथ थोड़ा सा सुहाना मिजाज है। हमने देखा कि अक्टूबर हीट बढ़ते हुए कभी अगर ऐसी ठंडी फुहारें आ जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या आपने आज की हेडलाइंस देखी हैं? अरे यार, भारत के जीत की बात तो हर जगह हो रही है। उसने पूरे देश का संडे मंडे सब कुछ कमाल बना दिया। कमाल की जीत की खुशी में और इस बेहतरीन सुबह को मस्त बनाने के लिए चलिए सुनते हैं इस मौसम को और खुशनुमा बनाने वाला ये गीत आशा भोसले, दिलराज कौर इनकी आवाज में। पंचमदा का है म्यूजिक। कीप लिसनिंग 107.1 FM।

0: मौसम मस्ताना तब हो जाता है जब हमारे हम सफर, हमारे हमराही, हमारे दोस्त हमारे साथ हो इस मौसम में, है ना, और इस सफर में। अब देखिए, शुभलक्ष्मी मस्तकार, दीपाली शिरोडकर, दीपा पालकर, विजेंद्र घटोल अकोला से, प्रमोद चिंचोलकर अकोला से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी हैं, यशवंत आजमुटे जी हैं, पंकज मोहोड, विश्वास चांदोरकर और रजनीकांत पाटिल वाधवन से, विक्रम आठवले मीरत से, रोहित रितेश शेट्टी मलाड से, वासुदेवन बदलापुर से, प्रमोद कारखानिस पुणे से, वेलापुर से दत्तात्रेय आदत्त, चेतन कुमार गया बिहार से और राकेश माथुर पुणे से, प्रणव शिंदे जी मुंबई से, और हमारे एक और श्रोता है जो कि हमारे संग जुड़ा है, जिनका नाम है रंजन, सुभाष चौहान, सुरेश बावकर और फिरोज जी, सभी का मैं आर्य मित्र दिल से स्वागत कर रहा हूँ। मुझे बड़े खुशी इस बात की है कि यार देखिए, जिंदगी तो आगे बढ़ती रहती है, मगर इस बढ़ती जिंदगी में अगर हर दिन के इतिहास के पन्नों में झांक के देखें ना, तो कुछ कहानियां सामने आती हैं। एक कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुद्रा तक पहुँच की है, बस कुछ ही पलों में आप सभी से साझा करूँगा। किशोर कुमार की आवाज में गाया, फिल्म शर्म लिखा है, टाइटल सॉन्ग।
1: ओ मेरी, ओ मेरी, ओ

देखिए दोस्तों, 5 अक्टूबर 1676 की बात है, जब ब्रिटिश शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई में सिक्के ढालने की अनुमति दी थी। आज देखो सिक्कों के साथ तो हम चल रहे हैं, वैसे 1000-2000 के नोट बंद हो गए, मगर फिर भी 500 के नोट के साथ कभी कभी सिक्के बहुत अहम ठहरते हैं। जब हम 500 के नोट देते हैं और सामने वाले के पास छुट्टे नहीं होते, तब वो हमारे हाथों में चॉकलेट थमा देता है। देखो एक वो जमाना रहा ना जब हम छोटे थे और चॉकलेट लेने के लिए पैसे नहीं थे, अब इतने बड़े हो गए कि इच्छा नहीं है फिर भी चॉकलेट लेनी पड़ती है, क्योंकि छुट्टे नहीं, सिक्के नहीं। आपको बताना चाहेंगे, जब ये अनुमति मिली थी ना उस जमाने में सिक्के ढालने की, उसके बाद कंपनी को बंबई में अपनी मुद्रा जारी करने का अधिकार मिला था। यहां ढाले गए सिक्कों में रुपया और पैसा शामिल थे। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक प्रभाव का जिस तरह विस्तार कर रही थी, वो आज तक अगर याद आए तो इन सभी कहानियों के साथ वो पुराने कुछ कॉइन्स आपको याद आते होंगे ना, 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे। क्या आपने आज तक संजोए रखे हैं ऐसे ही कुछ पुराने कॉइन्स? अगर हाँ तो हमें बताइए पुराने कॉइन्स कौन कौन से हैं और कैसे हैं। आपके उसी कॉइन्स की अगर फोटो हमें आप दिखा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। 8657661071 पर।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

कुछ लोग खेतों में एंजॉय करके हमारे शो को सुन रहे हैं, जैसे कि विजेंद्र गटोल अकोला से। कुछ लोग ऐसे हैं, चाय की चुस्कियों के संग मैंने कहा तो काम पे लग गए। फिरोज सिगानपुरिया जी ने 1000 साल पुराना एक कॉइन हमारे संग साझा किया है। हालांकि ये कॉइन मुझे लगता नहीं हमारे देश का है, बट उनके पास है तो जरूर। दीपा पालकर जी कहते हैं कि 25 पैसे और 50 पैसे के हमारे पास बहुत सारे कॉइन हैं, और हमारे कई सारे बाकी श्रोता जो है ना शायद मशगूल हो गए हैं कॉइन्स ढूंढने में, तो हम चाहेंगे, देखो हम तो आपको काम पर लगा दिए, मगर ये तेरा घर ये मेरा घर है। हर घर में कहानियां अलग हैं, हर घर में कॉइन्स अलग है, हर घर में पैसे अलग होंगे, मगर मैं कहना चाहूंगा चाहे जहां कहीं भी जिस किसी भी घर में आप रह रहे हो, बस हर घर में प्यार पनपता रहे, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं आपके पास कितना पैसा है, बस आप कितने खुश हैं ये हम देखना चाहेंगे। थोड़ी देर में जानेंगे एशियन गेम्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों ने क्या करतब कर दिखाई।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: कभी खट्टी मीठी तकरार,
3: जब तुम चाहो पास आते हो।
2: कभी बे इंतहा प्यार, कभी चुलबुली सी शरारत, तो कभी मासूमियत बेशुमार।
0: ये है अनोखे रंगों वाला
2: FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। क्या बात कहें, देखिए एशियन गेम्स में हमारे भारतीयों ने कुछ इस कदर अपना रंग जमाया। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मेडल पहले से भले ही घटे हो, मगर भारत का 85 मेडल्स के साथ चौथा स्थान जो है वो हांगझाऊ के 106 मेडल्स के तुलना में भले ही नंबर्स में गिरावट दर्शाता हो, लेकिन ये अभियान कुछ सकारात्मक संदेश भी तो देता है। क्या, अब देखिए विमेन्स हॉकी, रिकर्व आर्चरी, स्क्वैश और गोल्फ में ऐतिहासिक गोल्ड जैसी उपलब्धियां ये साबित तो करती है ना कि भारत केवल कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय एक मल्टी स्पोर्ट्स नेशन के रूप में उभर रहा है। हॉकी टीमों का गोल्ड जीतकर 2028 ओलंपिक्स का सीधा टिकट पाना, क्रिकेट में दबदबा कायम रखना भी कितना उत्साहजनक रहा है। आपने देखी होगी ना वो मैच? मैंने तो देखी भैया। देखो साफ है कि भारत का खेल दायरा जो है ना वो विस्तृत हो रहा है, लेकिन ग्लोबल गेम्स में टॉप पर पहुंचने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। हर गांव से कई सारे और खिलाड़ी आएंगे, बस उन खिलाड़ियों में और हम में कौन सा बंधन है यार, तोड़ दो बंधन की दीवारों को, आ जाओ आगे और भारत का नाम एशियन गेम्स में और ऊंचा करो, ओलंपिक्स में भी ऊंचा करो, भारत का तिरंगा लहराते रहो, तोड़ दो ये बंधन की दीवारें। सुनाएंगे आपको लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में गाया फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत। सुनते रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई ये शो।

तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, क्या जबरदस्त बात लिखी है यार। ये लिरिसिस का कमाल होता है और ऐसे कई सारे गाने लिखने वाले हमारे लिरिसिस

आनंद बख्शी साहब का क्या कहना, एक दूसरे के लिए उन्होंने इतने प्यारे प्यारे गाने लिखे, लक्ष्मी प्यारे का म्यूजिक रहा है। हम चाहते हैं इन सभी गीतों का आनंद उठाते हुए हमारे संग आप जुड़े रहें 8657661071 पर। भैया बहुत देर बीत गया, अब भी आप कॉइन भेज रहे हो ऐसा ना हो जाए कि कहीं हमारी संपत्ति बढ़ जाए बट फिर भी हमारे सारे के सारे श्रोतागण आज काम पे लग गए, अपने घर के उस कोने में जाके ढूंढ रहे कहां कहां हमने कॉइन रखे हैं। अंगूरी वर्मा जी हजारीबाग झारखंड से हमें कुछ कॉइन भेज रहे हैं, रंजन जी हैं, और उन्होंने भी 1985 के कुछ कॉइन्स हमारे संग शेयर करे हैं 50 पैसे के। दीपा पालकर जी भी कहती हैं कि हमारे पास भी कई सारे ऐसे कॉइन हैं। प्रणव शिंदे जी कहते हैं कि हाँ हम आपके संग जुड़े हुए हैं, आज वर्ल्ड टीचर्स डे है तो उसके बारे में भी हम 10 से 11 के बीच बात करने वाले हैं, मगर हम चाहते हैं अगले पायदान पर आपको एक ऐसे स्टार के बारे में बताए जो बोल रही है यार मुझे मुंबई नहीं रहना, मैं जा रही हूँ हिमाचल प्रदेश। पता है कौन है वो? आदित्य धर और यामी गौतम। भैया बॉलीवुड के धुरंधर डायरेक्टर है ना आदित्य धर, और उनकी एक्ट्रेस पत्नी यामी गौतम, वो कहते हैं अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, बट शांत जीवन बिताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सीली सी हवा वहां पे कानों को छू जाए तो बात बने। आपको शहर छोड़कर कभी ऐसे लगता है कि किसी शांत जगह पर चले जाए, जैसे यामी गौतम ने ये डिसीजन ले लिया हिमाचल प्रदेश जाने का चलो हम भी पहाड़ों का हुस्न देखते हैं और सीली हवा कैसे छूती है उसका आनंद उठाते हैं। Keep listening 107.1 FM Rainbow with आपका मनमीत

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले। कॉस्मोस कार लोन है ना?
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।

कभी ऐसे हुआ है कि आपने किसी एक्टर किसी एक्ट्रेस को देखा और आपको लगा यार ये ऐसे किरदार क्यों करती है, या फिर कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस को नहीं लगता होगा यार मुझे भी कुछ अलग किरदार करने चाहिए? अक्सर हम रोमांटिक किरदारों में नजर आते हैं। कृति सेनन यही तो सोच रही है कि अब बस हो गया, अब मुझे ग्रे शेड करनी है, और ऐसी शेड कि भाई वो किरदार हर किसी के जहन में रहे, और वो किरदार करने के लिए वो बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उसका इंतजार कब खत्म होगा मगर पता नहीं। हम चाहते हैं आपकी इंतजार की घड़ियां अब खत्म कर दे और आपको बतला दे कि ये गाना हम आपके लिए लाए हैं। किशोर कुमार की आवाज में गाया ये अंदाज सुनिए एफएम रेनबो पर। बस कुछ ही देर में ठीक 10 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 10 बजे के उस पार नमस्ते भारत प्रोग्राम। बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग एफएम।

9:52 हो गए हैं दोस्तों, और अब हम चाहते हैं कि आपको आज की तारीख के कुछ वो दिन विशेष भी बताएं जो कि याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, ताकि पता चले कि क्या हुआ था कब, बराबर ना। 2011 की बात है जब भारत में दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट जो है ना आकाश, वो लॉन्च हुआ था। इस टैबलेट की प्रौद्योगिकी का विकास जो है या फिर निर्माण जो है वो संयुक्त रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं डाटा विंड ने किया था। आपको पता है, अगर आपको पेंटिंग की चाहत हो और अगर आप नए नए पेंटिंग्स निकाल रहे हो, ड्राइंग कर रहे हो, तो कभी कभी कुछ महान हस्तियों की भी पेंटिंग्स देख लिया करो। 58 वर्ष की आयु में जिनका निधन हुआ था, महान चित्रकार राजा रवि वर्मा, वो 1906 में आज के दिन हमें छोड़ चले गए थे। जैसे कि मैंने कहा कि मीरा साहिब बीवी जो है वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला जज बनी थी, 1989 की ये बात है। और ऐसी कुछ बातें जब किसी तारीख से जुड़ जाती हैं तो वो तारीख बड़ी अहम हो जाती हैं। आज 5 अक्टूबर है, विश्व शिक्षक दिवस के रूप में हम 10 से 11 के बीच आपसे बात करने वाले हैं, टीचर्स के अहमियत को जानने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश रहेगी मेरी यानी आपका मनमीत आरजे अमित की कि हमारे संग बने रहना। 8657661071 पर मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा मैसेजेस का। बताइए आपके जीवन में शिक्षकों का क्या महत्व है। 10 बजे सुनिएगा हिंदी में समाचार और समाचार के उस पार नमस्ते भारत कार्यक्रम।

वैसे भी कोई जल्दी है नहीं, मगर फर्स्ट जेम्स बॉन्ड मूवी आपको पता है डॉक्टर नो, वो आज 64 साल कंप्लीट कर रही हैं। 1962 में आज के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी। और टाइटैनिक मूवी की अदाकारा को कौन बोल सकता है यार, केट विंसलेट, जो कि आज अपना 51वां जन्मदिन मना रही हैं। और साथ ही साथ चाइना टाउन फिल्म भी 64 साल कंप्लीट कर रही है। 1962 में रिलीज हुई इसी फिल्म का ये गाना आखिरी पायदान पर मैं आर जमीत आप सभी के लिए प्ले कर रहा हूं। और बताना चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं का भी हमारे लिए यही कहना है कि क्या तेरी महफिल है सरब यार, क्या महफिल जमाई है। तो आपको कैसा लगा ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट बताइए 8657661071 पर। 10 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। समाचारों के इस बार आर जमीत आपको ले जाएगा नमस्ते भारत की ओर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: सुबह के 10 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पहमला वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों सहित उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। समाचार में आगे, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति पहमला आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर भी राष्ट्रपति पहमला से मुलाकात करेंगे। समाचार में आगे खबर है मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान जताया है। रायगढ़ और रत्नागिरी में भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। और जानते हैं खेल की दुनिया में क्या हो रहा है। एशियाई खेल जापान के नागोया में संपन्न हो गए हैं। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: कभी कभी हमारी जिंदगी में कौन आता है, कौन जाता है, कोई यादें छोड़ जाता है, कोई जाने के लिए आता नहीं, साथ रहने के लिए आता है। और इसलिए आरजे अमित कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। और ये अवसर आज हमने ढूंढा है, उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नमस्ते भारत इस कार्यक्रम के साथ। हैं प्री जहां की रीत सदा इस सेगमेंट में आज हम जागतिक शिक्षक दिवस मनाने वाले हैं। और पता है कौन से गाने के साथ मैं आगाज कर रहा हूं? ये वो नशा है जो उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज के संग, जो जीता वही सिकंदर इस फिल्म के साथ हमारे जीवन में समाया हुआ है। स्कूल की यादें, कॉलेज की यादें, वो टेबल, दोस्त, एक साथ खाना खाना और टीचर के आने के बाद पढ़ाई में मशगूल हो जाना, याद है ना वो दिन?

दोस्तों आज है जागतिक विश्व दिवस और आज के दिन हमारे से जुड़ने वाले जितने सारे श्रोता है आप सभी को मैं इसी दिन का एक ऐसा वाक्य बताने जा रहा हूं जिस वाक्य के साथ हर किसी को अपने अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। आपको पता है हम जब छोटे होते पता नहीं होता टीचर की अहमियत क्या होती है, बट धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, हम अपने घर से गुजरते हैं, रास्तों पर देखते हैं कुछ बच्चे अपने बस्तों के साथ चलते रहते हैं किसी यूनिफॉर्म में, पता नहीं होता ये आखिर है क्या। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है कि ये कोई स्कूल नामक चीज़ है जहाँ बच्चे सारे एक साथ जाते हैं, एक साथ टिफिन खाते हैं और कोई टीचर होते हैं जो इन्हें सिखाते हैं। तो पहले तो हम रोते रोते जाते हैं मगर धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है, चाहत कुछ ऐसी कि हर दिन स्कूल जाना हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है और उसे फॉलो करते करते हर दिन हर लेक्चर या हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले अलग अलग टीचर हमारे जीवन में कुछ इस कदर शिरकत करते जाते हैं कि हमारा छोटा सा वो दिमाग कई नायाब चीज़ों के संग भरने लगता है। जैसे मानो एक टोकरी लेकर हम बाजार जा रहे हैं और कई सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, उठा रहे हैं, या एक टोकरी में किसी पेड़ के अलग अलग फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं और धीरे धीरे टोकरी भर जाने लगती है। फिर पता चलता है कि हमारे टोकरी में कितने सारे फूल आ गए हैं, है ना। ठीक इसी तरह हम सभी का जीवन अपने ज्ञान से रंगीन करने वाले इन सभी शिक्षकों को जागतिक शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं आरजे अमित ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा, शत शत प्रणाम करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं, अजी ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं और

भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी

0: पर है छाना।
1: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
2: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
1: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
2: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
3: चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है। सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। 10:17 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत कार्यक्रम है प्री चाह की रीत सदा। इस सेगमेंट में मैं आरजे अमित आप सभी से बात कर रहा हूं कुछ ऐसे शिक्षकों की जिन्होंने हम सभी का जीवन बनाया। अब देखिए 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते तो हैं, भारत की मिट्टी ने हमेशा गुरुओं को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया है। आज ऐसे गुरुओं को, चाहे दुनिया भर के गुरु क्यों ना हो, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा भविष्य संवारते हैं ना, उनको हम सलाम करना चाहते हैं। मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कि तुम्हारे जीवन में गुरु है कौन, बोलता है मेरे जीवन में तो YouTube को और Google को मैं गुरु मानता हूँ और हाल ही में आए AI को। मैंने कहा क्यों, जो सवालों के जवाब हमें पता नहीं होते वो दे देते हैं। देखिए जमाना बदल गया, बदले जमाने में इन गुरुओं का सम्मान क्या होता है। किस तरह कबीर दास जी ने सच कहा था ना, याद है आपको, कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि सच्चा शिक्षक जो होता है ना, वो केवल किताबी ज्ञान नहीं देता गूगल से ढूंढ के, बल्कि जीवन जीने के संस्कार देता है। वो संस्कारों से हमें बड़ा वैभवशाली कर देता है। हम चाहते हैं अनजान, कुछ न जानने वाले, कुछ न पहचानने वाले हम सब उन गुरुओं के चरणों में आज शरण आ जाए। सुनते रहना नमस्ते भारत कार्यक्रम आरजे अमित के साथ। कई सारे श्रोता जुड़े हैं, बस कुछ ही पलों में आप सभी का मैं जिक्र करने वाला हूं। बताइए आपका नाम, आप कहां से हैं? 8657-66-1071 पर।

ना तुम जानो ना हम, क्या बात है यार। लगे लगी आवाज में ये गाना मॉर्निंग बना गया मेरा। और ये मॉर्निंग अगर बड़ी सदाबहार करनी हो ना, तो मैं चाहूंगा जब हम मनुष्य शक्ति केंद्र गए थे, वहां पे बहुत बढ़िया बात बताई थी उन्होंने कि जब कभी उठो ना सुबह, तो सबसे पहले आप भगवान को या आप जिस किसी को भी पूछते हो, उन्हें जरूर एक बार नमन करो। और नमन करते वक्त आप पांच लोगों को जरूर वंदन करना। तो हमने कहा पांच लोग कौन हैं? तो बोले माता पिता, दूसरे गुरु, गुरु के साथ साथ

अपने वाइफ के या आपकी जो लाइफ पार्टनर हैं उनके माता पिता, और फिर उनके गुरुओं का भी सम्मान करना। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद जो धरती है ना, धरती माँ, उस धरती माँ को झुककर वंदन करना कभी मत भूलना, क्योंकि जो झुकता है ना वही ज्ञान पाता है। आपको पता है, एक बाल्टी होती है, वो कुएं में जाती है, अगर वो सीधी की सीधी रहे तो क्या उसमें पानी भरेगा? नहीं ना, वो जब झुकेगी तभी वो पानी भर पाएगी। जब हम पहाड़ चलते हैं तो झुक कर चलते हैं, और जो झुक कर चलता है वही आगे बढ़ता है, ये भूलना नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे संग जुड़े हुए सारे के सारे श्रोता कुछ इस कदर इस कार्यक्रम का आनंद उठाए कि ये धुन की हर किसी को अपने गुरु की याद दिलाए। बने रहना एफएम रेनबो पर आपका मनमित आरजे अमित के संग। सुनिए नेहा बसीन की आवाज में धुन की ट्रैक।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं,
3: दिल को छू लेने वाली शायरी हो,
2: क्या मूड आया है कहानी में,
3: या हो दिलकश गीत।
4: बावरा मन राता के तरसे रे, नैना भी मल्हार बन के बरसे रे।
3: आप तो जानते हैं, हम हैं आपके सबसे पुराने मीत।
5: जिसके लिए दिल संभलने लगा है वो कौन है, तू ही है।
3: 107.1 FM रेनबो ही है वो ठिकाना, जहाँ बजता है हर तरह का संगीत। Because we are musically your

क्या बात कहे यार, हमारे इतने सारे श्रोता हमें इतना प्यार करते हैं उसका अंदाज़ा हमें नहीं आता इस स्टूडियो में बैठकर। बट आप जब मैसेजेस करते हैं तब पता चलता है कि कैसा माहौल बना हुआ है। चाहे पूजा जी हो, वज्रा जी हो, दिनेश वंजारी भंडारा से हो, या फिर प्रणव शिंदे जी, प्रकाश शिंदे जी, और हम जब गाने प्ले करते हैं तो रंजन जी कहते हैं मैं तो पहला नशा पहला खुमार कॉलेज के दिनों में गाता था जब फेस्ट में था। और फोटोग्राफी की मुझे जिस गुरु ने शिक्षा दी है उनका नाम डॉक्टर सुशील कुमार अंकन है, बेहतरीन फोटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और स्टेज कलाकार भी वे रहे हैं। देखिए, हर किसी को अपने अपने गुरुओं की याद आ गई, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, है ना। रजनीकांत पाटिल वाधवन से हमारे संग जुड़े हुए हैं, श्रेय राउत हैं, दीपाली शिरोडकर जी हैं, अंधेरी इससे डॉक्टर अंजू जी भी हमें सुन रही हैं और वो कहती है कि मैं तो मेरे स्कूल में हर बार फर्स्ट आती थी, तो उसी बहाने मैं सारे टीचर्स को याद करती हूँ क्योंकि उनकी मैं फेवरेट स्टूडेंट जो बनी। मुझे दीपा पालकर जी की कही हुई बात बड़ी अच्छी लगती है, उन्होंने कहा कि ये पेरेंट्स के साथ स्टाफ के बारे में या स्कूल के टीचर्स के बारे में जब कभी हम बात करते हैं तो वो अपने आप में रिस्पेक्ट आ जाता है। और स्कूल में छोड़ते समय रोने वाले बच्चों को स्कूल का स्टाफ कैसे मैनेज कर लेता है वो तो हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, बट वो भी हमारे पेरेंट्स ही बन जाते हैं। और फिर पैदा हो जाता है लगाव, ये लगाव काफ़ी ज़रूरी होता है। इस पल हमें माया करने वाले, वो लगाव पैदा करने वाले टीचर्स क्या हर किसी को मिल पा रहे हैं, ये सवाल तो है ही, है ना। मगर मुझे ऐसे लगता है कि उसी लगाव को अगर आप भी मिस कर रहे हो तो ये गाना अपने सारे उन टीचर्स के नाम हो जाए जिन्होंने वो लगाव, वो माया, वो प्यार पैदा किया, वो अपनापन पैदा किया और हमें पेरेंट्स को कुछ घंटों के लिए बुलाने पर मजबूर कर दिया। सुनते रहना FM रेनबो पर, RJ अमित के संग। नमस्ते भारत।

आज हमें मैसेजेस करने वाले और हमारे संग जुड़ने वाले लोगों में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो बहुत दूर से हमें मैसेज कर रहे हैं, मतलब FM सेट पर नहीं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के ज़रिए हमारे संग जुड़े हुए हैं। उनमें एक ऐसा नाम सामने आता है जो है अकोला से विजेंद्र गटोल जी, वर्ली से स्नेहा तो है ही, और वो कहती हैं कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के संग कुछ नए गाने और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हम एंजॉय कर रहे हैं सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ। मोहम्मद फरमान हमारे से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून, उनकी पूरी फैमिली हमें मुरादाबाद ज़िले से सुन रही हैं। सूरज लोंढे, प्राची लोंढे, एकलव्य लोंढे, बल्लार शाह से हमें सुन रहे हैं। भंडारा से दिलेश वंजारी हमारे संग जुड़े हैं और इन सभी के साथ कुछ वाद्वन के हमारे लिसनर्स हैं, रजनीकांत पाटिल और श्रेय राउत, मिलेश गजानन राव, दीपाली शिरोडकर हैं, दीपा पालकर जी हैं। विजय लक्ष्मी शेट्टी जी कहती हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो भी हमारे अब गुरु बन गए हैं। हम उन्हें कुछ ज्ञान पढ़ाए तो वो सुनते नहीं हैं, बट हमें उनका ज्ञान सुनना पड़ता है या फिर उन्हें ही फॉलो करना पड़ता है। शुभलक्ष्मी मस्तकार कहती हैं कि हमारे ज़िंदगी में शिक्षक का महत्व जो है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। जब हम छोटे थे तो वो हमें सिखाते थे, कभी वो हमारी गलती ढूंढते थे और प्यार से समझाते थे। कारण ये था कि हम आगे बढ़े और कहीं आगे बढ़कर वो जिद गलतियां ना करें जो बचपन में हम कर रहे थे। अंगूरी वर्मा हमारे संग जुड़ी हैं अपने पूरे फैमिली के साथ, मध्य प्रदेश से, दादर से बाबा है। मिलिंद शिदिये जी हमारे संग जुड़े हैं दहसर से, वो तो कहते हैं कि आज आपने गाना प्ले किया था तेरे मेरे बीच में, एक दूजे के लिए फिल्म की मुझे याद।

दिला गया 26 बार मैंने देखी है। उस जमाने में अगर आपने इन फिल्मों पर प्यार किया है तो कुछ फिल्में ऐसी भी होती है ना जो गुरुओं का सम्मान हम सभी को सिखलाती हैं। आपको अंकुश फिल्म याद है बच्चों की? याद होगी ना, उस फिल्म ने हमें बड़ा ही एंटरटेन किया था। और आज हम चाहते हैं कि अगर उस फिल्म की याद आपको दिला दे तो उसी फिल्म के साथ हम तक पहुंची ये प्रार्थना जो है ना वो हमें स्कूल में ले जाती है और बतलाती है कि कैसे हम हिम्मत जुटा पाते हैं इस प्रार्थना के साथ। आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हमें ज्ञान देने वाले उन सभी गुरुओं को भगवान लंबी उम्र प्रदान करें।

कानपुरिया, अंगुरी वर्मा, इन सभी के साथ कुछ और नाम जुड़ जाते हैं। बुड़ाना फैमिली, यशवंत आडमुठे, छत्रपति संभाजीनगर से हमें आशुतोष देशपांडे मैसेज करते हैं। राजू शिंदे जी भी जुड़े हुए हैं अपने परिवार के साथ। गणेश पाटिल वाधवन से, प्रमोद चिंचोलकर, पंकज मोहोड, विश्वास चांदोरकर, विक्रम आठवले और रितेश शेट्टी मलाड से हैं। वासुदेवन बदलापुर से, प्रमोद कारखानीस, दत्तात्रेय आदत, चेतन कुमार, सुभाष चौहान। आज इन सभी के साथ वज्रा जी ने हमें एक मैसेज करके कहा है कि हम हमारे टीचर्स के लिए एक गाना डेडिकेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमने कहा कौन सा, बोले हम दिल दे चुके सनम का टाइटल सॉन्ग। तो चलिए उन टीचर्स के नाम ये गाना करते हैं और कुछ ही पलों में मैं आप सभी से विदा लेने वाला हूँ। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यार आज का दिन बड़ा खास अंदाज में मनाइएगा। अक्सर हम हमारे बर्थडे वगैरह मनाते हैं ना, तो चलो आज जागतिक शिक्षक दिवस मनाते वक्त हम अपने अपने टीचर्स को याद करें। वैसे कड़वा सच है कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम उन लोगों को भूल जाते हैं ना जिन्होंने हमें पहली बार कुछ लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। आज उन्हें विश करने का दिन नहीं है बल्कि उनको याद करने का, उनका आभार जताने का दिन है जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया। एक काम करो, उठाइए फोन और करिए अपने पसंदीदा टीचर को याद, उनसे बात कीजिए कुछ देर, क्योंकि मैसेज करके आपकी बात नहीं होगी, बात तब होगी जब आप उनसे कनेक्ट हो जाओगे। इसलिए आपका मनमीत आरजे अमित कहता है कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। चलिए मुझे दीजिए इजाजत, अभिनव हमारे नेक्स्ट आरजे स्टूडियो में हाजिर हैं। हम चाहते हैं जल्दी हम आपसे मुलाकात करें। अगले शो में मिलने के लिए मैं बड़ा ही बेकरार हूं। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर। नवरात्रि आ रही हैं, उनकी तैयारी में आप सभी जुटे रहेंगे मुझे पता है। बट 14 तारीख नवरात्रि के भीतर वेनसडे में हम आपसे फिर एक बार मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर।

नमस्कार और वक्त हो चला है अब आज के हिंदी समाचार का। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राज्य मार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की।

स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति पारमेलिन आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने कल घाटकोपर में सामूहिक क्षमापना, विश्व मैत्री दिवस और जैन समाज रत्न अलंकरण समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री वर्मा ने कहा कि भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, Musically Yours.
1: और इसी म्यूजिकल योर्स पर आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव जी। हाँ, आप जानते ही हैं मुझे। हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों का, इस्तकबाल करता हूँ आज के आपके इसी फेवरेट शो जिसका नाम है ब्रेक फ्री। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे एक और शख्सियत की, एक कमाल के स्पोर्ट्स पर्सन की। सुबह का वक्त है और अगर आप अपने काम पर निकल चुके हैं और ऑफिस पहुंच चुके हैं और कॉलेज में भी हैं या शायद घर पर बैठे हुए अपना दिन शुरू कर रहे हैं, तो आज एक घंटा एक थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि आज बात होगी एक ऐसे इंसान की जिसने भारत में फुटबॉल को सिर्फ खेल रहने नहीं दिया है, जिसने करोड़ों लोगों को ये महसूस कराया कि भारत का तिरंगा फुटबॉल के मैदान पर भी उतनी ही शान से लहराता है। आज बात होगी सुनील छेत्री की। नाम छोटा है लेकिन कहानी बहुत बड़ी। कैप्टन, लीडर, लेजेंड सुनील छेत्री। मैं हूँ आपका हमराज आरजे अभिनव और आप सुन रहे हैं ब्रेक फ्री। गाने होंगे, बहुत सारी बातें होंगी, पेश करता हूँ सबसे पहले ये गीत।

मरहबा हूँ आप लोगों के साथ, आपका हमराज आरजे अभिनव। जी हाँ, जितने लोग मुझसे पूछ रहे थे और बार बार कह रहे थे कि कब आने वाला है नया वाला शो, तो मैंने पहले ही बता दिया था और आज मौजूद हूँ आप लोगों के साथ। कहाँ? यहीं FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स पर, और है शो आपका फेवरेट ब्रेक फ्री, और कहानी चल रही है, बात चल रही है सुनील छेत्री की। आज का एक घंटा हम निकालेंगे उस इंसान के नाम जिसने करीब दो दशक

तक भारतीय फुटबॉल की उम्मीद को अपने कंधों पर उठाए रखा। चलिए आज थोड़ा ब्रेक फ्री होते हैं और रोजमर्रा की भागदौड़ से और सुनते हैं उस खिलाड़ी की कहानी जिसने हमें एक बहुत साधारण सी बात सिखाई। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है लेकिन आपको आगे ले जाने का काम आपकी मेहनत करती है। सुनील छेत्री का जन्म 3 अगस्त 1984 को दिल्ली में हुआ। कहानी जन्म से शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है उस बच्चे से जिसे खेलना पसंद था। बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल, किसी को बैडमिंटन, लेकिन कुछ बच्चे खेल को अपना जीवन बना लेते हैं। सुनील छेत्री भी उन्हीं में से एक थे।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: बड़ा हूँ आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अभिनव। जी हाँ, और हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेक फ्री में किसकी? सुनील छेत्री की। जी हाँ, उस खिलाड़ी की जिसने स्पेशली अपनी स्किल्स से ही नहीं, अपने हार्डवर्क से भी अपने आप को लगातार साबित किया। आइए कुछ और बातें आपको बताता हूँ। दिलचस्प बात सुनिए। उन्होंने सुपर कप और दिल्ली लीग से अपना सफर शुरू किया। जब छेत्री शुरुआत कर रहे थे तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक दिन वो भारत के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों में से एक बनेंगे। उन्होंने खुद कहा कि उस समय उन्हें ये सपना तक पता नहीं था कि वो देश के लिए खेलेंगे। बस खेलना था और मैदान पर उतरना था, बस बेहतर होना था। और शायद यही उनकी कहानी की पहली बड़ी सीख है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में मंजिल इतनी बड़ी

बनाऊंगा आप लोगों के बीच में आपका हमराज आरजे बना। जी हाँ, सारे गाने इसलिए ऐसे रखे हैं और आपको इसलिए पसंद आ रहे हैं, इसलिए अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सभी स्पोर्ट्स मूवी से हैं। जी हाँ, अभी गोल्ड फिल्म के भी कुछ गीत लेकर आऊंगा और आप लोगों के पास गोल्ड के लिए भी गीत लेकर जरूर आऊंगा। 12 जून 2005, क्वेटा पाकिस्तान। एक 20 साल का खिलाड़ी पहली बार भारतीय सीनियर नेशनल टीम की जर्सी पहनता है और सामने था पाकिस्तान। पहला इंटरनेशनल मैच और छेत्री ने उसी मैच में भारत के लिए गोल कर दिया। सोचिए, पहला मैच, पहला इंटरनेशनल गोल, और उसके बाद एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो लगभग 19 साल चला। जिस जर्सी को उन्होंने पहली बार पहना, उसी जर्सी को उन्होंने अपने आखिरी इंटरनेशनल मैच तक पूरी ईमानदारी से निभाया। उनका इंटरनेशनल करियर 151 मैच तक गया। भारत के लिए उन्होंने 94 गोल किए और वो भारतीय फुटबॉल के ऑल टाइम लीडिंग इंटरनेशनल स्कोरर बने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई की मीडियम वेव 144 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। जी हम बात कर रहे हैं हम लोग सुनील छेत्री की। वो भारतीय फुटबॉल के ऑल टाइम इंटरनेशनल स्कोरर बने थे, लेकिन दोस्तों किसी खिलाड़ी की ग्रेटनेस सिर्फ उसके गोल से तय नहीं होती, क्योंकि गोल तो स्कोरबोर्ड पर दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे की मेहनत वो स्कोरबोर्ड पर नहीं दिखाई देती। सुबह का ट्रेनिंग सेशन, इंजरी, थकान, हार, क्रिटिसिज्म और फिर अगला मैच, यह इसलिए कहानी है। और तब बात उस नंबर की जिसे आज पूरा भारत पहचानता है, नंबर 11, सुनील छेत्री की जर्सी नंबर 11। लेकिन क्या आपको पता है कि नंबर शुरुआत में किसी खास योजना का हिस्सा नहीं था। छेत्री ने बताया था कि जब वो क्लब फुटबॉल में आए तब उपलब्ध नंबर्स में 11 ही मिला था। मोहन बागान में नंबर 10 पर जोस बरेटो थे, नंबर 15 पर बाइचिंग भूटिया और दूसरे नंबर्स भी ऑक्यूपाइड थे, तो मिला नंबर 11 यानी 11। तो उन्होंने सोचा ठीक है यही सही, और फिर वही नंबर 11 भारतीय फुटबॉल की पहचान बन गया।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले। कॉस्मोस कार लोन है ना?
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

जी हाँ, टीम इंडिया हैं हम। सुनील छेत्री को तीन शब्दों में याद किया जाता है, कैप्टन, लीडर, लेजेंड। लेकिन कैप्टन होना सिर्फ आर्म बैंड पहनना नहीं होता है। कैप्टन वो होता है जो मुश्किल वक्त में सबसे पहले खड़ा हो, जो हार के बाद भी टीम के सामने रहे, जो जीत में खुद को पीछे रख सके और जो यंगस्टर्स को ये महसूस कराए कि तुम कर सकते हो। छेत्री ने कई जनरेशन के खिलाड़ियों के साथ खेला, उन्होंने सीनियर प्लेयर्स से सीखा और बाद में यंगस्टर्स को सिखाया। उनके करियर में बाईचुंग भूटिया जैसे खिलाड़ियों का प्रभाव रहा और बाद में वो खुद कई युवा खिलाड़ियों के लिए वही बड़े भाई बने। यही खेल की खूबसूरती है, एक जनरेशन बैटन पकड़ती है और फिर अगली जनरेशन को दे देती है।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सुनील छेत्री की, लेकिन असल में हम लोग बात कर रहे हैं उस मेंटेलिटी की जो किसी भी इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और अगर आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, आरजे हैं, एथलीट हैं, ज़िंदगी में अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि करना क्या है, तो छेत्री की कहानी से एक बात सीखिए। आपको हर दिन पूरी ज़िंदगी नहीं जीतनी है, आपको बस आज का दिन जीतना है। आज की ट्रेनिंग, आज की मेहनत, आज का काम, आज का गोल, और एक दिन यही छोटे छोटे दिन मिलकर करियर बनाते हैं।

पर हम आप लोगों के साथ, जी हाँ, ब्रेक फ्री। कुछ नंबर्स की अगर बात करें, सुनील छेत्री ने भारत के लिए 151 इंटरनेशनल अपीयरेंस की, 94 इंटरनेशनल गोल किए, भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल गोल स्कोरर, 4 इंटरनेशनल हैट्रिक्स और भारत के लिए बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस वाला निर्णायक प्रदर्शन। उन्होंने AFC चैलेंज कप 2008 में फाइनल में हैट्रिक की, इंडिया ने टूर्नामेंट जीता, एशिया कप में वापसी का रास्ता बना, SAFF चैंपियनशिप में भी कई बार भारत को सफलता दिलाई। 2015 में वो पहले भारतीय बने जिन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल में 50 गोल्स का आंकड़ा पार किया। इन नंबर्स को पढ़ते हुए हमें एक सवाल पूछना चाहिए, 94 गोल्स तक पहुंचने के लिए कितने हजार किक्स लगी होंगी, कितने मिस्ड चांस, कितने डिसअपॉइंटमेंट्स, कितनी सुबह, कितनी शाम, कितनी बार खुद से कहा होगा, और एक और बार, एक और कोशिश, एक और मैच, और वो है कंसिस्टेंसी। यही है कंसिस्टेंसी। सुनील छेत्री को अर्जुन अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला, 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला, और कई बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर। लेकिन एक बात उन्होंने अवार्ड्स के बारे में बहुत खूबसूरती से कही थी, अवार्ड आपको बेहतर खिलाड़ी नहीं बनाता, आपको बेहतर, खुद बेहतर बनने की कोशिश करनी पड़ती है। बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर सर्टिफिकेट देखकर खुश हो जाते हैं, अवार्ड मिल गया, प्रमोशन मिल गया, फॉलोअर्स बढ़ गए, लेकिन ऐसे सवाल है, क्या हम खुद बेहतर हुए? क्योंकि ट्रॉफी शेल्फ पर रखी जा सकती है, लेकिन कैरेक्टर वो रोज बनाना पड़ता है। फिर आया 6 जून 2024, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, इंडिया वर्सेस कुवैत। ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं था, ये सुनील छेत्री का आखिरी इंटरनेशनल मैच था, और ये करियर का 151वां इंटरनेशनल अपीयरेंसेस। स्टेडियम में हजारों लोग मौजूद थे, मैच 0-0 से खत्म हुआ, इंडिया जीत नहीं पाया, लेकिन उस रात एक खिलाड़ी नहीं हारा, क्योंकि 19 साल तक देश के लिए खेलने के बाद सुनील छेत्री ने इंडियन जर्सी को विदा कहा। फाइनल विसल के बाद फैंस, प्लेयर्स, ऑफिशियल, सबकी आंखों में इमोशंस थे। एक दौर खत्म हो रहा था, एक ऐसी आवाज़ जो मैदान पर हर इंडियन फुटबॉल फैन को उम्मीद देती थी, अब नेशनल टीम जर्सी में नहीं सुनाई देने वाली थी। छेत्री ने कहा था कि उन्होंने जो कुछ था वो दे दिया, और शायद इससे खूबसूरत रिटायरमेंट लाइन कोई हो भी नहीं सकती। लेकिन क्या सुनील छेत्री की कहानी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि खिलाड़ी रिटायर होता है, लेकिन उसकी लेगेसी रिटायर नहीं होती। आज अगर कोई बच्चा फुटबॉल लेकर मैदान में जाता है और अपनी जर्सी पर नंबर 11 लिखता है, तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। मैं इंडिया के लिए खेलना चाहता हूं, तो छेत्री की कहानी आगे बढ़ती है। कोई युवा हार के बाद फिर ट्रेनिंग पर जाता है, तो छेत्री की कहानी आगे बढ़ती है। लेगेसी का मतलब ये नहीं कि लोग आपका नाम याद रखें, लेगेसी का मतलब है आपके बाद आने वाले लोग आपके कारण, आपकी वजह से थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। इस मामले में सुनील छेत्री ने बहुत कुछ छोड़ा है।

वक्त हो चला है अब आज के हिंदी समाचार का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा है कि रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण और राज्य की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने जनहित के कार्यों को भी बढ़ावा दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। आज नई दिल्ली में जर्मनी के नेताओं के साथ बैठक में श्रीमती सीतारमन ने कहा है कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत रुक गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में 2020 में हुए दंगों और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के बाद 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा की SIT से जाँच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है। चेक गणराज्य की निकोला बार्टोनकोवा ने विश्व में दूसरे नंबर की खिलाड़ी आर्याना सबालेंका को चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में सीधे सेटों में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में अमेरिकी ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव पर 4-6, 6-4, 6-4 से जीत हासिल करके टूर्नामेंट में अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखा है।

दा से, यानी कि आज मैं बात करने वाला हूँ रेट्रो फैशन की। दोस्तों, कभी आपने किसी पुरानी फिल्म का कोई सीन देखा है और अचानक आपकी नज़र कहानी से ज़्यादा उस हीरो की शर्ट पर चली गई हो, या हीरोइन की साड़ी, उसके हेयर स्टाइल, उसके सनग्लासेस, या फिर वो क्लासिक ब्लैक एंड व्हाइट लुक, और आपके मन में आया यार ये स्टाइल आज भी कितना शानदार लग रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो आज का हमारा ब्रेक फ्री आपके लिए है। जी हाँ, यानी कि मतलब ब्रेक फ्री की बात का म्यूजिक कैफे। आज हम बात करेंगे रेट्रो फैशन की, लेकिन सिर्फ पुराने कपड़ों की नहीं, आज बात होगी उस दौर की जब फैशन में शोर कम था लेकिन स्टाइल बहुत ज़्यादा। कपड़े सिर्फ ट्रेंड नहीं होते थे, उनमें पर्सनालिटीज़ होती थी। आज हम देखेंगे जो फैशन कभी पुराना हो गया था वही आज फिर से नया क्यों लग रहा है। मैं हूँ आपका आरजे। अगले 30 मिनट हम करेंगे एक फैशन टाइम ट्रेवल, चलेंगे 60s से 70s, 80s, 90s और फिर वापस आएंगे आज के फैशन में, क्योंकि दोस्तों रेट्रो वापस नहीं आया, रेट्रो कहीं गया ही नहीं था, बस हमने उसे फिर से नोटिस करना शुरू किया है।

जी हाँ, मना हूँ आप लोगों के साथ इस रेट्रो की पेशकश में। आज फिर ये हमें नया क्यों लग रहा है? हमने बस इसे नोटिस किया है। सबसे पहले रेट्रो आकर है क्या? रेट्रो का मतलब सिर्फ पुराना नहीं होता, रेट्रो का मतलब होता है पुराने दौर के एस्थेटिक्स को आज के वक्त में फिर से अपनाना, यानी पुरानी चीज लेकिन नए अंदाज में, जैसे हाई वेस्ट ट्राउजर्स, फ्लेयर्ड पैंट्स, पोल्का डॉट्स, कैटाई सनग्लासेस, प्रिंटेड शर्ट्स, लेदर जैकेट्स, वाइड कॉलर्स, प्लेटेड स्कर्ट्स, क्लासिक साड़ीज। हालांकि लोग आजकल स्पेशली जो फोटोज बना रहे हैं, आप लोगों ने वो देखा होगा, उसमें डेनिम जैकेट्स ज्यादा यूज कर रहे हैं। वो पुराने जमाने के शूज जिन्हें देखकर लगता है कि भाई साहब इनके पास स्टाइल का कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था। आज फैशन की दुनिया में एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, जो ट्रेंड्स हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के दौर में थे, वही आज जेन जी और मिलेनियल्स को कूल लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैशन का एक बड़ा नियम है, फैशन चलता नहीं, घूमकर वापस आता है। एक ट्रेंड आज जाता है, 10-15 साल बाद वापस आता है और हम उसे नया समझकर पहन लेते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, 60s और 70s इंडियन फैशन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वक्त था। सिनेमा फैशन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर था और फिल्म स्टार्स जो पहनते थे वो लोगों की वार्डरोब्स में पहुंच जाता था। महिलाओं के फैशन में साड़ी का चार्म तो था ही, लेकिन ब्लाउज डिजाइनिंग्स में एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके थे। बोल प्रिंट्स, बिग सनग्लासेस, बिंदी हेयर स्टाइल्स हाई और एक बहुत खास एलिगेंस। पुरुषों के फैशन में भी बड़ा बदलाव आया, शर्ट्स के कॉलर्स बड़े होने लगे, प्रिंटेड शर्ट्स, बेल बॉटम ट्राउजर्स, लॉन्ग हेयर, साइडबर्न्स, लेदर जैकेट्स और सनग्लासेस। और फिर आया 70s का बॉलीवुड हीरो, ऐसा हीरो जो स्क्रीन पर आता ही पहला डायलॉग नहीं बोलता था, पहले उसका स्टाइल बोलता था। वाइट कॉलर शर्ट्स, फ्लेयर ट्राउजर्स और एटीट्यूड ऐसा कि लगता था पूरा मुंबई उसी का है।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

बताऊँ आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे अपना 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो मुंबई म्यूजिकली योर्स पर, और मैं भी हूँ आपका हमराज। तो म्यूजिकली तो होना ही है, ईव या आफ्टरनून या मॉर्निंग, क्योंकि जब मैं हूँ साथ में। अगर इंडियन रेट्रो फैशन की बात हो तो बॉलीवुड को कैसे भूल सकते हैं। 70s और 80s में फिल्मों ने फैशन को घर घर पहुँचाया। एक तरफ थे अमिताभ बच्चन द टावरिंग फिगर, उनका टॉल सिलुएट्स, बेल बॉटम्स, शर्ट्स, जैकेट्स और वो आइकॉनिक सनग्लासेस। और दूसरी तरफ जीनत अमान, उनका फैशन आज भी इंस्पिरेशन है, वेस्टर्न सिलुएट्स, बोल्ड स्टाइलिंग और सनग्लासेस और कॉन्फिडेंस। और फिर आया 80s, फैशन थोड़ा ज़्यादा कलरफुल हुआ, शोल्डर पैड्स, ब्राइट कलर्स, डेनिम, बिग हेयर और एक्सपेरिमेंटल लुक्स। और फिर आया 90s, जहां फैशन ने एक अलग ही पर्सनालिटी पकड़ ली, डेनिम जैकेट्स, ग्राफिक टी शर्ट्स, ओवरसाइज शर्ट्स, हाई वेस्ट जीन्स, स्कंचीज, कलरफुल एक्सेसरीज और बॉलीवुड की रोमांटिक स्टाइलिंग। एक जनरेशन के लिए ये फैशन नॉस्टैल्जिया है और दूसरी जनरेशन के लिए ये पिंटरेस्ट इंस्पिरेशन है। अब आते हैं आज पर, क्योंकि सवाल ये है आज रेट्रो फैशन इतना पॉपुलर क्यों है। सिंपल आंसर है, खैर आंसर आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा फिर मैं तो बताऊंगा ही, बड़ा छोटा सा है। लेकिन हाँ, आज रेट्रो फैशन इतना पॉपुलर क्यों है, तब तक लेकर आता हूँ आप लोगों के पास ये गाने।

पास, वैसे मेरे पास आप लोगों के कोई जवाब आया नहीं, लेकिन मैं ही बता देता हूँ कि आज रेट्रो फैशन इतना पॉपुलर क्यों है। सिंपल आंसर है कि आज की फैशन इंडस्ट्री लगातार इंस्पिरेशन खोज रही है। और संजय दर्शन ने मुझे इसका जवाब ज़रूर दिया है, उन्होंने कहा है कि आज के समय में रेट्रो इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि लोगों को पुराने दौर की याद और उन्होंने के कूल अंदाज से जोड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले टीस का दौर चला गया था, जिसको भी देखो वही पिक में नज़र आ रहा था, और यही है कि फैशन के नाम पर यही पहना जाता है। तो स्पेशली आजकल बेटे अपने पिताजी की शर्ट्स पहन रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली रेट्रो से आए हैं, और लड़कियां भी माँ की साड़ी पहन रही हैं या बहू, क्योंकि उसमें उनका नया लुक मिलता है उनको। सो बट दैट्स एक्चुअली फाइन रीज़न। और ये भी है कि आज की फैशन इंडस्ट्री लगातार इंस्पिरेशन खोज रही है। सबसे बड़ा इंस्पिरेशन हमारा पास्ट है। अगर आज हम इंस्टाग्राम खोलें तो पिंटरेस्ट खोलें तो फैशन मैगजीन देखिए या बॉलीवुड के नए म्यूजिक वीडियोस, आपको रेट्रो रेफरेंसेस हर जगह दिखाई देंगे। फर्क ये है कि आज हम पूरा रेट्रो लुक कॉपी नहीं करते, आज हम उसे मॉडर्नाइज करते हैं। मान लीजिए आपने हाई वेस्ट ट्राउजर पहनी, ऊपर सिंपल क्रॉप टॉप और विंटेज सनग्लासेस, लुक रेट्रो भी है लेकिन पूरी तरह से मॉडर्न भी, या पुरानी स्टाइल की साड़ी लेकिन ब्लाउज कंटेम्प्रेरी, पुराना प्रिंट लेकिन मॉडर्न सिलुएट्स, और यही है आज का रेट्रो फैशन। ओल्ड इंस्पिरेशन, न्यू एटीट्यूड। और जेंटलमैन, आपके लिए भी रेट्रो फैशन में बहुत कुछ है। अगर आप क्लासिक रेट्रो लुक चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए ट्राउजर्स से, हाई वेस्ट ट्राउजर्स, प्लीटेड ट्राउजर्स, स्ट्रेट फिट पैंट्स और ऊपर टक्ड इन शर्ट्स।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। भेजने वाले हैं अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।

0: वो लिखते हैं,
1: जो निश्चल प्रेम में रहते हैं वो छल समझ नहीं पाते, और जो छल में रहते हैं वो निश्चल प्रेम नहीं समझ पाते।
0: जी, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
1: तो हमें पहला संदेश मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
0: ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, बंटी और बबली वर्मा।
1: और बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी और ख्याति सारवा।
0: छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू।
1: और छत्तीसगढ़ हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू और पायल साहू।
0: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है,
0: हम उमंग कार्यक्रम में मासिक संस्करण श्रोता संवाद का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कार्यक्रम से महत्वपूर्ण जानकारी सुनने को प्राप्त होती है। सच मानिए, ये कार्यक्रम जानकारी का महत्वपूर्ण खजाना है। 7 सितंबर के कार्यक्रम श्रोता संवाद में शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर डॉक्टर श्वेता तंवर जी से अजीत सर जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। शिक्षा में जेंडर समावेशन विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी सरल शब्दों में सुनवाई गई। ये जानकारी सुनवाने के लिए डॉक्टर श्वेता तंवर जी के साथ साथ अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: अगला संदेश हमें मिला है सहसपुर छत्तीसगढ़ से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सती बाई साहू जी का।
0: ईदू ग्राम ईदू पोस्ट कारकल तालुका उडुपी जिला कर्नाटक से एच सिद्धार्थ जी लिखते हैं।
1: आप लिखते हैं, आदरणीय कार्यक्रम के बारे में हमारी प्रतिक्रिया
0: जी।
1: स्त्री शिक्षण को अपने प्रोत्साहन देकर महिलाओं में हिम्मत बढ़ाई है। पुराने जमाने में पुरुष प्रधान समाज में सामाजिक कार्यकलाप ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को लोग खारिज करते थे
0: जी।
1: जेंडर डिस्पैरिटी पर आपका श्रोता संवाद बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब सुनिए पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था आपसे कि दक्षिण गंगोत्री क्या है और ये कहाँ स्थित है।
0: इसका उत्तर है साथियों, दक्षिण गंगोत्री दक्षिण ध्रुव पर स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है।
1: और हमारा अगला प्रश्न था आपसे कि बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया।
0: इसका उत्तर है, बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के आर नारायणन द्वारा उसकी माता को दिया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न था, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के भीतर भूकंप, भूगर्भीय, ज्वालामुखीय और टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों के कारण सुनामी आती है। समुद्र के भीतर भूस्खलन भी इसका मुख्य कारण है।
1: और हमारा अगला सवाल था कि मेघालय शब्द का क्या अर्थ है।
0: मेघालय शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, मेघ और आलय
1: जी।
0: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो अर्थ बना मेघालय यानी मेघों या बादलों का घर।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई सबसे चर्चित और प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए।
0: गांधी जी द्वारा रचित संभवतः सबसे अधिक चर्चित किताब का नाम है, मेरे सत्य के प्रयोग
1: जी। और अब सुनिए आज का प्रश्न, तो हो जाइए तैयार। हमारा आज का प्रश्न है, सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: सूर्योदय की भूमि किस देश को कहते हैं।
1: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
0: जी।
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम। तो आज के पहले कार्यक्रम के क्रम में हम सुनेंगे हमारा मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: आइए सुनते हैं श्रोता संवाद।
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, प्रस्तुत है उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर महीने के पहले सोमवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं ये विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही विभिन्न पहलों पर। तो आज इस क्रम में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की

0: नई पाठ्यपुस्तकों की। तो श्रोताओं, आपको हम बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव। आप एनसीईआरटी के सामाजिक विज्ञान और शिक्षा विभाग की अध्यक्षा हैं। तो प्रोफेसर गौरी श्रीवास्तव, आज के उमंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: नमस्कार, आप सभी को स्वागत करती हूँ और आपने समय दिया मुझको सुनने के लिए, इसका मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान एक बहुत अहम विषय है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पे हमारी जो पाठ्य पुस्तक है समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के बारे में बताने का कोशिश करूंगी।
0: तो डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी की पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे की विषय वस्तु के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए और बताइए कि यह सामाजिक विज्ञान से कैसे जुड़ा है।
1: हाँ अजीत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है और मैं पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को पता है, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं तो विषय तो समाज से जुड़ा ही होता है
0: जी।
1: दूसरा, समाज और प्रकृति में क्या समन्वय है उसके बारे में भी हम बताने का कोशिश करते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से
0: जी।
1: और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने बल दिया है कि जब भी हम बच्चों को समाज के अध्ययन के बारे में बताने का प्रयास करें तो हमें समाज के जो विषय हैं, जैसे आप जानते ही हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, ये इसका समावेश है और हम इसको सोशल साइंस कहते हैं, यानी समाज शास्त्र। आप हमारी पाठ्य पुस्तक मिडिल स्टेज की ले लीजिए और आप देखिए कि जितनी भी पाठ्य सामग्री है, भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी, अतीत के चित्रपट, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, शासन और लोकतंत्र, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन से क्या जुड़ाव है
0: जी।
1: इन विषयों को हम अपनी छठी, सातवीं, आठवीं में दिए हैं और उसके अंदर जब आप विषय वस्तु को पढ़ेंगे गहन ढंग से, आप देखेंगे कि उसमें एक लीनियर प्रोग्रेशन है, यानी कि हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए, इतिहास ले लीजिए कि समय सारणी से जो भी घटना घटी है उसके बारे में हमारा विषय वस्तु आपको बताने का प्रयास करता है। साथ ही साथ घटनाओं का विवरण हम जब करते हैं तो हमारा विषय वस्तु आपको जोड़ने की कोशिश करता है, ताकि आपके मन में जिज्ञासा, आपके मन में उस विषय के बारे में और गहन ढंग से कहां से लें उसके बारे में, और तीसरा, आप किन गतिविधियों के माध्यम से ये विषय को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, आपने प्रकृति आपदा के बारे में आपकी जिज्ञासा हुई तो प्रकृति आपदा के बारे में आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ सकते हैं, साथ साथ अपने सराउंडिंग्स में देख सकते हैं कि क्यों ये घटती है और हमें क्या करना चाहिए
0: जी।
1: इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक में आप देखिए, जो विषय हमारे भूगोल से जुड़ा है, हम बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी जो
0: प्राकृतिक संसाधन कह ले,
1: हमारी प्रकृति संसाधन है वो क्या है, और साथ साथ हम बताने की कोशिश करते हैं उसकी संरक्षण हम कैसे करें, ताकि आज आपने सुना होगा हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो छोटी छोटी गतिविधि से हम कैसे अपनी ये धरोहर का संरक्षण करें। जब आप पाठ्य पुस्तक उठाते हैं और ये विषय पढ़ते हैं, हमारी संस्कृति, विरासत एवं ज्ञान परंपरा, तो एक गौरव जैसी भावना आती है कि हमारे भारत वर्ष में ये विषय कितना अहम था। हमारे जितने भी पर्सनालिटीज थे, आप कोई भी विषय ले लीजिए, उन्होंने गहन ढंग से अध्ययन करके, विज्ञान के क्षेत्र में ले लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में ले लीजिए, कितनी अच्छी बातें बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आगे ले जाता है, साथ साथ प्रकृति के बारे में भी बताने का प्रयास किया जाता है, क्यों और क्या, ऐसे सवालों का जवाब भी हमारी ज्ञान परंपरा में आपको मिलेगा जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे
0: जी।
1: अनेकता में एकता एक ऐसा पाठ है हमारी सभ्यता संस्कृति में जुड़ा है, हमारे पाठ्य पुस्तक में, जहां मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की कि हमारे जो रीति रिवाज है या हमारी जो फेस्टिवल्स हैं वो विभिन्न तो होते ही हैं, लेकिन हर विभिन्नता में एक एकता की भी
0: भावना

0: भावना आती है और हम पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक सूत्र में जोड़ करके हमारी विकसित यात्रा, सभ्यता और संस्कृति का भी एक बहुत अहम स्थान है और हमारी पाठ्य पुस्तकों में इसको अच्छी तरह से छठी, सातवीं, आठवीं में दर्शाया है। इसको कृपा करके पढ़िए और अपने प्रांत में भी देखने की कोशिश कीजिए कि इसको हम कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं और किस तरह से हम उससे जुड़े रखते हैं। कितने समय से ये शुरू हुआ लेकिन आज भी हम उसको बड़े ही धूमधाम से इसको मनाते हैं, गाना गाते हैं और आप देखिए आज हम लोग की जो हेरिटेज है, आर्ट है, कितना लोग इसको लोकप्रिय ढंग से अपने जीवन में इसको उतारते हैं। और बच्चे, आप लोग तो अपने प्रोजेक्ट वर्क में भी इसका समावेश करते हैं और ये सारी चीजें आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में मिलेगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी चर्चा किया गया, कौन कौन से विभिन्न कार्य करते हैं हमारे भारतवर्ष में, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि बार्टर से आज मोनेटाइजेशन में हमारी यात्रा कैसे रही, साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में भी विभिन्न ढंग से बताया गया है, तो हमारी पाठ्य पुस्तक में ये भी आप पाएंगे। और लोकतंत्र के बारे में भी अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये एक जुड़ाव जो हमारी सामाजिक विज्ञान को बनाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे हम इसको पढ़ें, एग्जाम्पल्स कैसे हम दे सकें और साथ ही साथ जब हम विश्लेषण करें तो तथ्यों के आधार पे हमें निष्कर्ष पे आना चाहिए, ना कि केवल पढ़ करके, क्योंकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो हमारे NEP 2020 में दिया गया है, वो भी आप तथ्यों का पहले एकत्रित करिए, उनका विश्लेषण करिए, तब आप नतीजे पे आ सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया है, गतिविधि कई दी है जो आप कर सकते हैं और खुद जुड़ सकते हैं इस विषय से, क्योंकि जब हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ा है। कुछ ऐसे हमारे पाठ हैं जो अतीत से जुड़े हुए हैं, लेकिन अतीत को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक हमारा ऑब्जेक्टिव है सामाजिक विज्ञान का, कंटिन्यूटी एंड चेंज, किस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति किए और क्या बात है कि कुछ चीज आज भी प्रासंगिक है, उसको हम लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे हमारी आर्ट है, संगीत है, हमारी सभ्यता संस्कृति है,
1: अलग अलग कलाएं हैं हमारी,
0: अलग अलग कलाएं हैं, इन सबको हम आज भी जोड़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें खुद को गौरव महसूस कराते हैं और हमारी आइडेंटिटी को, इंडियननेस को स्ट्रेंथन करने का कोशिश करते हैं।
1: जी, तो प्रोफेसर गौरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े विस्तार से इस पाठ्य पुस्तक के बारे में जानकारी दी। मेरा एक प्रश्न और है आपसे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इस पुस्तक को पढ़ाने के लिए आप शिक्षकों को किस प्रकार का निर्देश देना चाहेंगे?
0: देखिए, मैं भी शिक्षक रह चुकी हूँ और मेरा अपना मानना है कि हम विधि को बहुत ही सरल ढंग से और बाल केंद्रीय अगर हम बनाते हैं तो बच्चे का जुड़ाव होना चाहिए। कक्षा में हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि बच्चों को हम समय दें कि वो प्रश्न करें, अपनी जिज्ञासा के बारे में औरों को भी बताने की कोशिश करें, क्योंकि आप एक किरण बच्चों के अंदर लाते हैं कि ये विषय केवल पढ़ने का ही नहीं है, समझने का भी है और आप खुद उसके साथ संवाद करें, क्योंकि बुक तो आपके सामने है लेकिन जब आप उसको आंखों से भी पढ़ेंगे, उसका अध्ययन भी करेंगे और उसको चर्चा करेंगे, इसका मौका आपको बच्चों को देना होगा। हम सब मानते हैं कि क्लास का समय जो है निर्धारित होता है, लेकिन उसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाने के लिए आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी जो भी विधि पाठ में दी गई है उसको हम एक टीचिंग एड के माध्यम से बता सकते हैं, बच्चों का समावेश कर सकते हैं, क्लास में बच्चों को मौका देना चाहिए कि वो अपनी बात बताएं, एक चर्चा करने का मौका मिले उनको, साथ ही साथ उनको हम डिबेट करने का मौका दें। और अगर हमने कोई पाठ के बारे में बताया, सभ्यता और संस्कृति मान लीजिए हमारे पाठ है, तो हम बच्चों को आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हो या हम बच्चों को भौगोलिक स्थिति के बारे में बता रहे हैं, तो उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहते हैं, यानी उनको विजिट कराने की बहुत जरूरी
1: उनको जरूरत लेके जाएं, उनको
0: लेके जाएं। और हमारा प्रयास ये होता है कि मान लीजिए गांव में कोई अच्छा आर्टिजन है या कुम्हार।

0: है, लोहार है, इनसे बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये जो कार्य हैं, ये कार्य कितने मुश्किल हैं और इनकी जो उन्होंने चीजें बनाई हैं वो आम जीवन से कैसे जुड़ा हो। और इससे बच्चों का जुड़ाव संस्कृति से भी होगा, कार्य से भी होगा, अर्थव्यवस्था से भी होगा। तो आप देखिए, आपने एक लिंकेज बताया, इंटरडिसिप्लिनरी भी बताया, बच्चों को अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ पाठ को रुचिकर बनाया। बच्चों के अंदर बहुत जिज्ञासा होती है, सपना होता है उनके मन में, और ये आप ही कर सकते हैं। विषय को इतना रुचिकारक बनाइए कि बच्चों को लगे हाँ समाजशास्त्र में है जिससे हम अपने जीवन को जोड़ सकते हैं। बच्चों के अंदर प्रोजेक्ट बनाने की बहुत जिज्ञासा होती है। मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ और जब भी मेरे क्लास में कोई विषय मुझे अच्छा लगता था तो मैं सोचती थी कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्या पेंटिंग करूं, क्या एक प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाऊं या ऑडियो वीडियो बनाऊं। तो ये सारी चीजें अगर उनके मन में आ जाती है तो इसका मतलब वो एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और जब ऐसा होता है तो समाज का जो अन्य विषय है उससे भी जुड़ाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे छठी से आठवीं की जो पाठ्य पुस्तक है वो एक है, इट इज वन टेक्स्ट बुक। और इस टेक्स्ट बुक की जो विशेषता ये है कि वो जितने भी विषय हैं उसको पिरो करके एक पाठ बुक में बनाया गया है। और इसको आगे करते हुए, क्योंकि आप पे बहुत दायित्व है कि आप इसको कैसे बच्चों तक पहुंचाएं, जब उनको इन सारे विषयों से जोड़िए, पिरोइए और उनके जीवन से जोड़िए और ये बताने की कोशिश करिए कहाँ थे और हम कहाँ आ गए।
1: जी,
0: ये बहुत जरूरी है, कंटिन्यूटी एंड चेंज।
1: जी, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि हम ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं की ओर से कि इस पुस्तक में, यानी समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे, इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इस पुस्तक में महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया गया है, हम ये जानना चाहेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अजीत जी।,
1: जी
0: मैं बताने की कोशिश करूंगी कि हमारी पाठ्य पुस्तक में महिलाओं को जहां जहां उन्होंने योगदान दिया है उसको समावेश किया है। और उन्होंने बॉक्स आइटम में भी दिया है, लेख में भी उनका विवरण किया है और जहां जहां समाज में अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी दिया है। जैसे आप ले लीजिए हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 में जो महिलाओं के बारे में दिया गया है, जैसे कि गार्गी जी के बारे में बताया है, वंदना बहादुर मैदा के बारे में दिया गया है जो एक सरपंच थी अपने गांव की और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। इसी तरह कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में कनगी महारानी के बारे में बताया गया है और प्रभावती गुप्ता जी के बारे में भी इस पाठ में दिया गया है। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में मुतम्मा के बारे में बताया गगया है और हमारी कक्षा 8 की पुस्तक में रानी दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई होलकर, रानी अकब्बा, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन महिलाओं का योगदान जिस जिस क्षेत्र में किया है उसके बारे में दिया गया है। और अगर आप हमारी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक देखें तो आप देखिएगा कि कक्षावार जहां जहां महिलाओं ने योगदान दिया है उनके बारे में चर्चा किया गया है और ये क्यों किया गया है, ताकि आपको भी प्रोत्साहित किया जाए, ताकि आप एक खोज करिए कि ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में गहन योगदान दिया है पर कुछ कारणवश, जिनको हम कहते हैं लेसर नोन, उनके बारे में भी आप एक प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि आपको खुद एहसास होगा कि जब भी समाज विकास के रास्ते पे चला, महिलाओं का योगदान हमेशा ही रहा। और आज भी आधुनिक भारत में भी आप देखिए कि हमारी महिलाएं किन किन क्षेत्र में कामयाबी के ढंग से अपना योगदान दे रही हैं। आर्मी में भी देख लीजिए, नेवी में देख लीजिए, पायलट देख लीजिए, जिनको पहले हम कहते थे अनकन्वेंशनल रोल,
1: हाँ, कार्य के किसी भी क्षेत्र में आजकल महिलाएं देखी जा सकती हैं,
0: क्षेत्र में
1: जी
0: उनका योगदान है। और हम बहुत गर्व के साथ भी कहना चाहते हैं कि हमारी एक पाठ्य पुस्तक फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग के में, जब भी पुस्तक आप उठाइए तो खेल के क्षेत्र में महिलाओं का क्या योगदान है वो बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। तो आप देखिए कि पाठ्य पुस्तक में विजुअल कंटेंट

0: में महिलाओं का समावेश है, जिसको आप कहते हैं जेंडर इंक्लूसिवनेस।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर गौरी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आई और एनसीईआरटी की इस विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में आपने बड़े विस्तार से जानकारी दी। तो श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हमारी आशा है कि इसके द्वारा हमारे श्रोता बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे मौका दिया। हम अपने सारे श्रोताओं का धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सुना, पर मैं और धन्यवाद आपको दूंगी जब आप हमारी पाठ्य पुस्तक पढ़िए और एक यात्रा में जाइए कि हम और इसको अपने जीवन से कैसे जोड़ें। तथ्यों को एकत्रित करिए और कोशिश करिए कि पाठ में आप और क्या जोड़ सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से। धन्यवाद सभी को, आपको अजीत जी
1: धन्यवाद। तो श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोता संवाद। तो अब सुनते हैं आज का अगला शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है आम का पेड़।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बच्चों को पौधरोपण के लिए प्रोत्साहित किया गया है तथा बताया गया है कि मात्र पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी लगातार देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है।
0: आम का पेड़।
2: गर्मियों के दिन थे, सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा,
3: ऐसे ही मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा।
2: उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता।

0: कुछ दिन बीत गए। आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा।
1: अरे वाह, पौधा निकल आया।
0: कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला,
1: ये पौधा मैंने लगाया है। ये आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे।
0: दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले,
2: क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो।
0: प्रिया बोली,
3: पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे।
0: उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे, फिर प्यार से बोले,
2: अरे बच्चों, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे।
0: ये सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला,
1: कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: इसी म्यूजिकल योर्स पर आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव, हिट एंड हॉट आपका लिसनर्स चॉइस प्रोग्राम लेकर आया हूँ, जो कि मुझे मालूम है आपका फेवरेट है, और इसलिए भी क्योंकि आपके मनपसंद गीत यहाँ पर सुनने को मिलते हैं, लेकिन साथ साथ मेरे कुछ सवाल जवाब भी रहते हैं, उसी के साथ लेकर आता हूं। तो मेरे पास अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट है, कई सारे नामों की जिन्होंने मुझसे फरमाइश की गीतों की, गानों की, और पहले लेकर आता हूं दिल में बसा के अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में। राकेश जी ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी, और एक आध गीत बीच में अपने आप के भी लेकर आऊंगा जो मेरे पसंदीदा हैं। स्टे ट्यून विद मी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ FM मुंबई, म्यूजिकली योर्स।

बनाऊँ आप लोगों के साथ यहाँ पर, जो कि आपका लेसर स्टर्स यानी कि हिट एंड हॉट। और कैसा लग रहा है प्रोग्राम, प्लीज़ मुझे अपने ज़रूर मैसेज कीजिएगा। हालांकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए हैं आपके जो गीतों को लेकर हैं, जी हाँ, और मैंने बिल्कुल उनको लाइन अप भी करके रखा हुआ है यहाँ पर, और आप लोगों के पास वो एक से बढ़कर एक गीत आने वाले हैं। और अगला गीत है मेरे पास, कौन किसी को बांध सका, कालिया मूवी का ये गीत है, बड़ा फेमस है, और मेहर ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी।

अगला गीत है आप लोगों के लिए और वो ये है यहाँ पर, जिसके लिए स्पेशली वो से फरमाइश की गई थी और एक से बढ़कर एक और बैक टू बैक बहुत सारे और सारे गीत हैं, जैसे कि कौन किसी को बांध सका, उसके बाद परदेश बाबू का क्या है प्यार, जिसके लिए विजेंद्र घाटोल ने हम लोगों से फरमाइश की थी, और उसके बाद गोप जी का जो गो झारखंड से हैं और उन्होंने फरमाइश की थी तुम्हें अपना बनाने की, गीत साख मूवी से।

तो अगर ओवरसाइज शर्ट, स्ट्रेट जीन्स और क्लासिक स्नीकर्स है, एक्सेसरीज भी इंपॉर्टेंट है, तो ये है क्लासिक वॉच, सनग्लासेस, लेदर बेल्ट और शायद एक सिंपल चेन। ये है आपका 90s वाला एफर्टलेस लुक, 80s वाला एटीट्यूड हो चुका है डेनिम जैकेट के साथ। तो ये थी आज की सिंपल रेटो जिसके बारे में मैंने बात की थी आपसे, और जो हमारी रह गई थी अधूरी किसमें, हिट एंड हॉट के बाद स्पेशली म्यूजिक कैफे में यानी कि उससे पहले। और अब लेकर आया हूँ आप लोगों के पास हिट एंड हॉट जो कि चल ही रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि स्टाइल का मतलब कॉस्ट्यूम पहनना नहीं है, स्टाइल का मतलब है अपनी पर्सनालिटी के साथ उसे कैरी करना। और लेडीज, रेट्रो फैशन तो जैसे आप ही के लिए बनाया, पोलका डॉट्स, फ्लैटर ट्राउजर्स, हाई वेस्ट स्कर्ट्स, विंटेज सनग्लासेस, प्रिंटेड साड़ीज, क्रॉप्ड जैकेट्स, हेड बैंड्स और क्लासिक हैंड बैग्स। और अगर आपको एलिगेंट रेट्रो लुक चाहिए तो सिंपल साड़ी, स्टेटमेंट ईयर रिंग्स और विंटेज सनग्लासेस। अगर थोड़ा सा प्लेफुल लुक चाहिए तो पोलका डॉट्स। सो कोई भी एक रेट्रो पीस चुनिएगा। और बस ये बात थी हमारे रेट्रो की, एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा आपको नए स्टाइल के साथ। तब तक अपने स्टाइल में पहनिए और अपना कॉन्फिडेंस रखिए और सबसे ज़रूरी अपने अंदाज में रहिए। बात कर रहा हूँ बहुत सारे और भी गीतों की क्योंकि यहाँ पर चल रहे हैं आप ही के फरमाइश के गीत। तो मैंने तुम्हें अपना बनाने के बाद अब लेकर आया हूँ परदेसी बाबू वाला एक और गीत, लेकिन उससे पहले लेकर आता हूँ मैं दर्द करारा और माशा जी की आ गई चिट्ठी। दीपा पालकर जी ने मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी, किताब मूवी का ये एक सॉन्ग।

0: कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा आग से बैठा पानी ताप।

0: इंग्लिश बोले मतलब हिंदी,
1: इस पर इसे बट पर व्हाट मतलब क्या,
0: माथे रोज लगाए बिंदी, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी, हिंदी में अलजेब्रा छान,
1: वी आई पी अटलवेर बनिया,
0: वी आई पी अनोखा।
2: और अगला सॉन्ग है क्या है प्यार बताओ ना, परदेसी बाबू का विजेंद्र घाटोल के लिए।

कैसा लगा शो प्लीज मुझे अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके पास मेरा नंबर है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, पंकज माहौड़ जी और प्रकाश जी, स्वर्णा, अस्मिता वाहिनी से गगनदीप जी, राकेश माथुर जी, सभी लोग जिनके मैं नाम शामिल कर पाया और जिनके नाम शामिल नहीं कर पाया हूँ, सभी के लिए मैं स्पेशली आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। और अब बैक टू बैक कुछ गीत लेकर आऊँगा। अजय जी ने फरमाइश की थी दमराय के आयशा के सॉन्ग दर्द करा रहा, संदीप जी ने बागों में बाहर है, और बस ये है। इससे पहले हम तो दिल चाहे तुम्हारा प्रकाश शिंदे जी के लिए ये एक गीत, तो मेरी तरफ से रहेगा मेरा भी एक गीत बीरा, अगर वो मैं लेकर आ पाया आप लोगों के लिए। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, म्यूजिकली योर्स, एफएम रेनबो, मुंबई 107.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: bonuses for Indian exports in Switzerland and further facilitate investment between the two countries. He said this will increase exports of Indian agricultural products, pharmaceuticals, textiles and engineering goods to Switzerland.
1: हमने भारत के एक्सपोर्ट्स का स्विट्जरलैंड में मार्केट एक्सेस बढ़ाने और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

0: once again. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Swiss President Guy Parmelin in New Delhi, says India and Switzerland will work together to boost trade, investment and develop trusted supply chains for the world. India and Switzerland ink several agreements to promote cooperation in transportation technologies, mobility systems and infrastructure. Finance Minister Nirmala Sitharaman hails India-EU free trade deal, says it reflects India's approach to negotiating and finalizing trade agreements. Punjab and Haryana High Court orders CBI probe into ED allegations of corruption against Punjab Chief Minister's office. And IMD forecasts heavy rainfall over Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till tomorrow. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। और मौसम विभाग ने कल तक कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कार्यकाल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्विट्जरलैंड ने आज परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणालियों और अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलां के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति राष्ट्रपति गी पामलां की प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले अक्टूबर में यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों के साथ ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते को लागू किया।
2: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला एफटीए है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इससे स्विट्जरलैंड को भारतीय कृषि उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात बढ़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जैव प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्विट्जरलैंड के निवेश को आकर्षित करेगा।
2: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी पर सहमत हुए।
2: आज हमने मिलिट्री एक्सचेंज और डिफेंस प्रोडक्शन में सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान की। न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग को और प्रगाढ़ करने पर भी सहमति बनी। वाराणसी का रोपवे, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा टनलिंग प्रोजेक्ट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग के उज्जवल उदाहरण है। इस सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए ट्रांसपोर्ट, मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एग्रीमेंट किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश वैश्विक शांति के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
2: हम ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, भारत शांति की दिशा में किए जाने वाले हर सार्थक प्रयास का समर्थन करता रहा है। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: इससे पहले राष्ट्रपति पामला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार तथा आर्थिक भागीदारी समझौते सहित भारत स्विट्जरलैंड साझेदारी को और मजबूत करने के राष्ट्रपति पामला के विचारों की सराहना की। राष्ट्रपति पामला को राष्ट्रपति भवन में तीनों सेनाओं ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है।
3: ये यात्रा हमारी करीबी, व्यापक और लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने, इसे और गहरा तथा मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमें द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल रहा है। हमें भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने की पहली वर्षगांठ मनाने का अवसर मिलेगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत इस वर्ष दिसंबर तक तीन और देशों के साथ व्यापार समझौते करने की उम्मीद में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल द्विपक्षीय निवेश संधियों का नया प्रारूप तैयार है और इसे जल्द ही मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए प्रारूप में दोनों पक्षों के निवेशकों को अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर बातचीत अभी जारी है और इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। नई दिल्ली में म्यूनिख नेताओं की बैठक में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि दोनों पक्ष एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां बातचीत में प्रगति नहीं हो रही है।
5: It's been a hard and very rigorously negotiated agreement.
6: ये एक कठिन और बातचीत के बाद तैयार किया गया समझौता है। बातचीत अभी भी जारी है। हालांकि हम ये मानना चाहेंगे कि दोनों पक्ष एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां इसके आगे किसी तरह की रियायत देना या लेना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर अभी भी गुंजाइश बची है तो दोनों पक्ष आगे काम कर सकते हैं।
5: There are rooms to operate from, both sides would do it.
1: वित्त मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना करते हुए कहा है कि ये व्यापार समझौतों पर बातचीत और अंतिम रूप देने के प्रति भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। उन्होंने इसे सभी समझौतों की जननी बताया।
6: मुझे लगता है कि ये समझौता बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि ये 2 अरब लोगों के बीच होने वाला समझौता है। इस समझौते के माध्यम से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/4 हिस्सा कवर होता है। भारत ने इस समझौते के अंतर्गत अपनी कुल टैरिफ लाइनों में से 92.5% को खोल दिया है और मूल्य के आधार पर लगभग 97% को कवर किया है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज असम के डिब्रूगढ़ से पहले अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक पोत को रवाना किया। इसमें असम पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड का मेथनॉल बांग्लादेश के ढाका में पंगाव बंदरगाह तक ले जाया जा रहा है। मालवाहक पोत ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरेगा। आजादी के बाद डिब्रूगढ़ से किसी विदेशी बंदरगाह के लिए पहली बार माल भेजा गया। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा है कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक विकास 2 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज विश्व पर्यावास दिवस समारोह में श्री साहू ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ सरकार की प्राथमिकता शहरों और गांवों को हरित, स्वच्छ, सतत और रहने योग्य बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष

0: लक्ष्य पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। विशेष श्रृंखला में आज जानेंगे कि उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के विकास को किस प्रकार आकार दे रहा है।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय है।
2: देश का सबसे बड़ा प्रदेश आज देश के सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाले राज्यों में से एक हो गया है। ये एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि ये एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र को नई पहचान देगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गाँव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी। यह एयरपोर्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव है।
1: पहले चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष है, जिसे भविष्य में 70 मिलियन तक ले जाने की योजना है। ये हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। ये याचिका निर्वाचन आयोग में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान एकतरफा फैसले लेने के आरोपों के संबंध में दायर की गई थी। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पर तैनात अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और तबादलों के लिए रिश्वत देने के दावों के बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि न्यायालय के फैसले से यह साबित होता है कि राज्य सरकार जानबूझकर अपने लोगों को बचा रही थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। RBI की नीति समीक्षा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें तथा खाद्य मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ रही है। समिति मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों का भी आकलन करेगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 218 अंक बढ़कर 72,128 पर, जबकि निफ्टी 71 अंक की बढ़त के साथ 22,493 पर था। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती नियंत्रित शेष क्षेत्रों को वापस लेने और पूरे देश में सत्ता बहाल करने के लिए सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति रशाद अल अलीमी ने कहा कि डी एस्केलेशन की सभी कोशिशें खत्म हो चुकी है। जमीनी स्तर पर यमनी फोर्सेस ने ताइज के कई मोर्चों पर भारी क्लैशेस की जानकारी दी है। उन्होंने हूती इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स को नाकाम करने और सैकड़ों हूती लड़ाकों के हताहत होने का दावा किया है। हालांकि हूतियों ने कुछ इलाकों में यमनी फोर्सेस की बढ़त के दावों को खारिज किया है। इस बीच सऊदी अरेबिया ने यमनी आर्म्ड फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है और कहा है कि यह अभियान स्टेट अथॉरिटी बहाल होने तक जारी रहेगा। डेवलपमेंट से यमन कंफ्लिक्ट के ओर बढ़ने और लड़ाई के नए एक फेज में प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। मनीष शिवा, आकाशवाणी दुबई।
0: मौसम विभाग ने कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में

कल तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पामलांग के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, दोनों देश व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने और विश्व के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकियों, गतिशीलता प्रणाली और अवसंरचना में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौते किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की सराहना की। कहा, यह व्यापार समझौतों पर बातचीत और उन्हें अंतिम रूप देने के भारत के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: न्यूज ऑन ईआईआर और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। शाम के ठीक 5:02 का समय है और कार्यक्रम लव यू जिंदगी लेकर आई हूं मैं शुभांगी आज आपके साथ। ये समय होता है लव यू जिंदगी का, अपने आप से बातें करने का, खोए हुए खुद को ढूंढने का, खुद को तलाशने का, खुद को समय देने का, है कि नहीं?

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: को रंगी बनाएंगे। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: सुन रहे कार्यक्रम लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो पर। हफ्ते का आज पहला दिन है, आज मंडे है। एक हफ्ता पूरा अभी गुजारना है। मंडे आता है तो ऐसा लगता है ना कि अरे ये मंडे क्यों आता है, अब बीच में कहीं छुट्टी तो नहीं है, होगी तो चलो अच्छा ही है, ये ढूंढते रहते ना। पहला दिन कैसे गुजरता है, उस पर पूरा हफ्ता कैसे जाएगा, कैसे बीतेगा, ये किसी किसी के मन में आता है। तो किसी को लगता है कि चलो आज ऐसा गुजरा है, कल कुछ और, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अलग। ये जो सोचना होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। बस बाहें पसारे समय हमारे लिए नए नए पल लेकर आता रहता है। बस एक एक वो पल जैसे जैसे आता है उसको हाय हेलो करो, बस निकल जाओ। ऐसे ही अगर दिन गुजारने की किसी की अगर सोच हो या किसी का ऐसा स्वभाव हो तो ऐसा नहीं लगता, मतलब जो जो मैंने अभी ना आते आते कुछ कुछ ऐसी बातें सुनी है कि बस ऐसे ही, मतलब जो मंडे को लगता है ना ओह बस छुट्टी ख़त्म हो गई, वीकेंड अब कब आएगा, इससे छुटकारा पाने के लिए, इस सोच से छुटकारा पाने के लिए ये अलग अलग जो जो कुछ आइडियाज़ आते रहते हैं ना, वो मैंने जो सुनी तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि अच्छा ऐसा भी होता है। रोज़ उठकर जाना है, वही रूटीन है, वही ट्रेन का सफ़र या बस का सफ़र जो भी है, और बस तो क्या करना है। तो ऐसे कुछ कुछ आता रहता है मन में, तो उसे आने दीजिए। और जैसे जैसे आप कुछ नया ऐसा करके सोचेंगे उतना ही तेज़ से वो दिन भी गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी आजकल पता कहाँ चलता है कि कब दिन शुरू हुआ, कब बीत गया, कब शाम हो गई।

इस गाने को अगर अपने ध्यान से सुना है, क्या खूब लिखा था। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला गया। क्या बात है, यही बात हम दोनों के इस गाने में भी है जो रफी साहब का गाया हुआ है। सुने क्या पहले? हाँ सुन लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं।

सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी, और ये गाने सुनकर वाकई ऐसा लगता है ना कि हाँ हाँ जिंदगी से कहना चाहिए, हर दम कहना चाहिए कि लव यू जिंदगी। कुछ नई शुरुआत जब करनी होती है या किसी से बात भी करनी होती है, बात छेड़नी है, अभी कुछ बोलना है, कुछ ऐसी कोई बात है या फिर कोई फैसला लेना है, ये सब करने से पहले, करने तक दिल में थोड़ा सा एक डर रहता है या थोड़ा सा टेंशन रहता है कि क्या होगा, कैसे बोले, क्या करे, फिर उसके बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो वो पहला कदम उठाते हुए ना थोड़ा ऐसा हिचकिचाना तो होता है, हर किसके साथ होता है, ऐसा नहीं कुछ लोग बहुत नहीं चलो दिल में आया कर दिया या दिल में आया बोल दिया, ऐसे भी होते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे हमें भी ऐसा होना चाहिए, तो ये सोचने में, ये टेंशन में जो समय जाता है, जो ऊर्जा हमारी जाती है, तो वो नहीं जाएगा। लेकिन खैर ऐसा सबके साथ नहीं होता है, तो हिचकिचाना तो होता ही है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन फिर जब वो हम कर देते हैं, वो कदम उठाना है उठा चलो उठा ही देते हैं, या किसी से कोई बात कहनी है चलो कह देते हैं, और वो कहने के बाद ऐसे लगता है कि अरे वाह चलो अच्छा हुआ, इतना टाइम जिस बात पर वेस्ट किया उसके रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे आए हैं। फिर वो छोटी से छोटी बात हो या कोई बड़ा फैसला हो, बहुत सारा दिल में उथल पुथल होता रहता है, और उसके बाद वो कह देते हैं आ इतना हल्का हल्का लगता है, और फिर वो पल होता है कहने का जिंदगी से कि लव यू जिंदगी।

0: बेझिझक बस मुस्कुराया करो, बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
0: म्यूजिकली योर्स।

सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर. और जिंदगी से लव यू कहने का मौका यहाँ आपको मिलता है जब आप ये प्रोग्राम सुनते हो. हर रोज आते हैं हम ये कार्यक्रम लेकर, और जैसे नाम है एफएम रेनबो और लव यू जिंदगी, तो ये तो सतरंगी, ये जो धनुष है, इंद्रधनुष है, वो तो खिलना ही चाहिए. जैसे एक मुस्कान खिले तो कैसे लगता है, वैसे ही हर रोज इस इंद्रधनुष को भी खिलाना है. वो खिलना ही चाहिए ये सोचकर ही सुबह उठना है. करके देखिए, फिर आपको लगेगा हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. रंग भी तो ये साथ होते हैं, सुर भी साथ होते हैं, तो ये इंद्रधनुष सात रंग और ये सात सुरों से सजा हुआ ये जो संगीत है, ये हर रोज आपको लव यू जिंदगी में यही याद दिलाता है कि खुद के लिए सोचो, अपने लिए सोचो, और अपने आप को ढूंढो, अपने आप को टटोलो. कहाँ खोए हुआ है, कुछ कहीं ना कहीं रुका हुआ है, उसे बाहर निकालो, उसे आगे बढ़ने दो. रफ्तार जो है उसको पकड़ने दो, जो जिंदगी ने तो रफ्तार पकड़ ली है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अटके होते हैं कि कुछ पीछे छूटा है, कुछ रुका है, तो उसे भी रफ्तार पकड़ने दीजिए. और फिर कहिए जिंदगी से कि लव यू.

5:53 का वक्त है और समय कैसे बीतता है संगीत के साथ पता नहीं चलता है। यूं ही तो नहीं शैलेंद्र जी ने जो कह रखा है, संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए, यही होता है गाने सुनते हुए कि समय का पता नहीं चलता है। और कभी कभी ये होता है कि जो हम कहना चाहते होते हैं वो किसी गीत के जरिए हम तक पहुँचा, अरे मुझे यही तो कहना था, अरे मुझे यही तो लगता है, ऐसा होता है ना। तो ये संगीत हमें बहुत कुछ देकर जाता है, ऊर्जा तो देता है, हमारा मूड बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है और उसे संगीत में भी बना देता है, कई बार हमारा जीवन संगीत में ही बना देता है। और अगर संगीत नहीं होता तो एक एक पल कैसे गुजारना है बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़रा सोचकर देखिए, अगर रंग नहीं होते, संगीत नहीं होता, जो जो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऊर्जा देकर जाती हैं, कितनी ज़रूरी है, जो रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हमारा ध्यान भी नहीं जाता है वहाँ, हमारी समझ में भी नहीं आता है कि अरे हाँ ये सारी ज़रूरी चीज़ें हैं। इतना हम ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि इन छोटी छोटी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है ये सोचने का भी समय नहीं है कि ये सब हमारी ज़िंदगी में है तो उसे समय देना है, ये सोचने का भी समय नहीं। इतनी रफ्तार पकड़ ली है ज़िंदगी ने और इसीलिए लव यू ज़िंदगी के बहाने थोड़ा सा रुकना है और सोचना है, थोड़ा सा हमारे लिए समय निकालना है और बस कहना है लव यू ज़िंदगी। FM रेनबो के साथ हर रात लेकर आती है हमारे लिए जो सौगात, सुबह उठकर FM रेनबो जो आपको देता है वो गीतों भरी सौगात। तो इसके बाद चलिए एक गाना सुनिए।

0: एफएम रेनबो को रंगी बनाएंगे। सुनते रहिए 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: अब से कुछ ही देर में ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे समाचार और 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज़े में मैं लेकर आऊंगी। बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन AIR और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। शाम के ठीक 6:16 हो चुके हैं और कार्यक्रम अंदाज हवैया में मैं शुभांगी हूँ आज शाम आपके साथ। और पिछली बार मैंने कुछ गीत ऐसे लाए थे कि जिन गीतों में जो कुछ कहना है उस नायक को या नायिका को या जो भी वो किरदार है उसे जो भी अपने दिल की बात कहनी है किसी सेलिब्रेशन में या किसी पार्टी में वो किस तरह से बयां करता है, तो आज भी कुछ ऐसे ही गीत लाई हूँ। और ख़ास तौर से ऐसे गीत मैं कोशिश कर रही हूँ आप तक पहुँचाने की कि जिन गीतों में गुस्सा भी जताया गया है, और ऐसे गीत कम होते हैं। पिछली बार भी कुछ गीत ऐसे मैंने चुने ज़रूर थे और आज भी कुछ ऐसे ज़रूर चुने हैं, लेकिन ऐसे जो गीत होते हैं कि जिनमें कुछ ना कुछ इस तरह से बयां किया जा रहा है कि जो कहना तो है लेकिन इतना समय नहीं है कि जाकर मिले और कहें, तो चले पार्टी में गाने का तो मौका होता ही था। तो ऐसे सिचुएशन में वो बात बताई जा रही है, तो मोस्टली दर्द भरे गीत या तो रोमांटिक ये ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो है ये सबका चहिता गाना है, रफ़ी साहब का गाया हुआ, और अगर मैं फिल्म का नाम बता ही दूँ तो आप जान जाओगे कि गाना कौन सा। और ये सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट गाना है ब्रह्मचारी से, है कि नहीं?

सुन रहे आप कार्यक्रम अंदाज बयां, और बयां करने का अंदाज जो अपने दिल की बात कहने का, उस तक पहुंचाने का जिस तक पहुंचानी है, वो जो अंदाज है, वैसे कुछ गीत मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और इसके बाद का जो गाना है उसमें ना गुस्सा है, और वो इस तरह से बयां किया गया है कि मतलब ये जो भावना है ना गुस्से की, उसको गीत में डालकर फिर उसको सुरों में भी सजाना, उसका एक गाना बनाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुश्किल बात होती है। और ये बहुत खूबसूरती से की गई है हमारे हिंदी फिल्म म्यूजिक में। तो मैंने इसके बाद का जो ये गाना चुना है, फिल्म है अनामिका।

रफ़ी साहब की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गीत, और इसके बाद भी रफ़ी साहब की ही आवाज़ें और ये गज़ल है। इसमें मायूसी भी है, नाराज़गी है, गुस्सा है, और थोड़ा सा एक वो भी है कि शब्द बोल तीर की तरह चुभते हैं ना, कुछ ऐसा गाना है ये, और थोड़ा सा तंज भी कसा हुआ है इसमें। तो इतने सारे जो भाव है, इतनी सारी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो इस गज़ल में बड़ी खूबसूरती से उतर कर आई है। और देखिए ना, ये 3 या 4 मिनट का गाना होता है, लेकिन उसमें ये सब कुछ भर देना और उसको इतना ज़्यादा असरदार बनाना, नहीं लगता आपको कि ये मुश्किल है? और हमने बहुत ज़्यादा पसंद किया इन सारे गीतों को, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, यहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता है, और जब जाता है तब तो वहाँ निकलनी ही होती है, दाद तो देते ही हैं हम। तो चलिए काजल की ये गज़ल सुनते हैं।

हो, ये जो गाना है इसमें भी थोड़ा सा गुस्सा है तो सही, लेकिन एक फक्र है बहुत, जो बहुत ज्यादा खूबसूरती से उभर कर आता है। और वो जो अपने आप पर भरोसा है, अपने प्यार पर, जिस तरह से हमने प्यार किया है, वो जो एक बात है इसमें, वो बयां करते हुए ये जो हीरो है ये कहता है कि प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई जो उसे खरीद लेगा। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद, मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो फिर आना उसके करीब। यूं ही नहीं मिलता है किसी को, और उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। और वो जो सहना होता है, वो जो आजकल हमें नहीं दिखता है, तो वो सहना सब कुछ होता है कि ये मैंने किया है। और उसमें कहीं भी बाहर एक अंदर एक ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है सामने है, कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है, कोई भी धोखा नहीं है, धोखेबाजी सोची भी नहीं है। तो इतना प्योर है मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत। और उस बात का उसे जो फक्र है, उस हीरो को, वो जिस तरह से बयान किया गया है, और वो सिचुएशन भी ऑफ कोर्स, तो उससे फिल्मों में ये जो गाने उभर कर आते हैं, बहुत ज़्यादा निखर कर आते हैं ये जो भाव होते हैं। और इसीलिए उसका जो असर होता है वो कुछ और ही होता है। अब इसके बाद ये तो भरे दरबार में गाया जा रहा है गाना, और ये मैसेज भेजा है उस हीरो ने अपनी हीरोइन के लिए। लेकिन अब वो तो दरबार में रहने वाली है, महलों में रहने वाली है, और ये तो साधारण सा कवि है। और इसलिए वो जो बीच में सब कुछ हुआ है, उसके बाद क्या है क्या नहीं, हाल चाल कैसे हैं, और मेरा हाल क्या है, ये सब कुछ उसमें उतर कर आया है, जिसके साथ ये मैसेज भेजा है। वो गा रही है दरबार में, हीरो का मैसेज हीरोइन तक पहुंचाने के लिए। मदन मोहन है संगीतकार, जहां आ रहा है फिल्म का नाम। हाँ, गाना तो जान लिया होगा, चलिए सुन लेते।

6:58 का समय है और कार्यक्रम अंदाज जिम्मेदारियों को समेटने का समय है। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और 7:10 पर कार्यक्रम हम तुम, जिसमें आपके लिए होगा एक सवाल और आपको देना होगा उसका जवाब। और बस उसके लिए करना है आपको थोड़ा सा इंतजार। सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: न्यूज ऑन एआईआर और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। शाम के ठीक 7:10 का वक्त है और प्रोग्राम हम तुम का वक्त होता है जिसमें आप शामिल होते हैं। और आज मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ, क्या आप भूलते हैं? आपको भूलने की आदत है और इस आदत की वजह से क्या आपको कभी डांट पड़ी है या कभी कोई मज़ेदार बात हुई है या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि अरे मेरे भूलने के कारण इतना बड़ा नुकसान हो गया या होते होते बच गया? ऐसी आपकी अगर आदत है भूलने की, तो उस वजह से जो जो हुआ है ज़्यादातर मज़ेदार बातें होती हैं या तो बड़ों की डांट खानी पड़ती है। जब हम छोटे होते तब तो डांट खाते ही हैं, लेकिन हम कितने ही बड़े हो जाए, हमसे बड़े तो हमेशा हमसे बड़े ही रहते, तो उनसे डांट तो पड़ती ही है। तो आपकी भूलने की आदत अगर है तो उस कारण क्या आपने कभी डांट खाई है या कोई ऐसी मज़ेदार बात हुई है, हमें बताइए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको बताना है कि आपके भूलने की आदत के कारण या कभी कोई चीज़ भूलने के कारण क्या ऐसी मज़ेदार बात हुई है ये?

7:22 का वक्त है, आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुम शुभांगी आज आपके साथ। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि आपकी भूलने की आदत अगर है और अगर नहीं भी है फिर भी आप कभी कुछ भूले हैं तो उसके बाद कोई ऐसी मजेदार बात हुई है या किसी से डांट खानी पड़ी है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके। फिरोजी गनपुरिया कहते हैं कि वो खाना खाने के लिए बाहर गए थे और कार्ड पेमेंट करना था तो बस कोई टेंशन नहीं था, लेकिन जब पेमेंट करने का टाइम आया तो इन्हें याद आया कि ये तो कार्ड ही भूल गए हैं घर पे। क्या बात है, फिर उसके बाद क्या हुआ ये मैं पूछूंगी तो नहीं, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि क्या हुआ होगा। ऐसे ही कुछ बात प्रसन्न चक्रवर्ती भी कहते हैं कि वैसे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आना या फिर कोई काम भूल जाना है, ऐसी एक भूलने की आदत सी है उन्हें। और ये भी जब बाहर खाने गए थे एक बार तो बिल पे करना ही भूल गए थे। लो इन्होंने तो और

और ज्यादा ही एक कदम आगे बढ़ा कि ये बिल पे करना ही भूल गए। प्रसन्ना, उसके बाद क्या हुआ ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। पंकज महोड़ कहते हैं कि इन्हें भूलने की आदत तो नहीं है, लेकिन कभी जब छोटे थे, मतलब जब छोटे होते हैं लेकिन फिर भी बड़े हुए होते हैं ना, कुछ ऐसी उम्र, जब फिर महीने का सामान वगैरह लाने के लिए माताजी या पिताजी अक्सर कहते हैं, तो ऐसी उम्र में वो जब थे तो अक्सर वो घर का महीने का भर का जो सामान भरना होता है ना वो भूल जाते थे, तो पिताजी से अक्सर उन्हें डांट पड़ती थी इस बात पर। और राकेश माथुर कहते हैं कि इन्हें नाम याद नहीं रहते हैं किसके, किसी से बात होने के बाद जैसे ही बात खत्म हो जाती है ये नाम भूल जाते हैं। ओके। मुकुंद कुलकर्णी, ये भी पुणे से हैं, और ये कहते हैं, हाँ लो इनकी बात सुन लो, ये कहते हैं कि डांट खाने के लिए घर में बड़ों का होना जरूरी है ऐसा नहीं है, खास तौर से उनके लिए जिनकी शादी हो गई हो। ओके। मुकुंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं, सबकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, और अब मैं हमारे बाकी श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। इस नंबर पर आपको ये भेजना है कि क्या आपको भूलने की आदत है, और अगर आदत नहीं भी है फिर भी अगर आप कुछ भूले हैं, अक्सर भूलते आए हैं, तो उस कारण कोई ऐसी मज़ेदार बात हुई है या किसी की डांट आपको खानी पड़ी है, कुछ ऐसा हुआ है, तो हमें लिखकर बताइए। फिर एक बार व्हाट्सएप नंबर बता दूं आपको 8657661071।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

7:37 हो चुके हैं, समय बड़ा तेजी से भाग रहा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, और मैंने जो आपसे सवाल पूछा है कि आपकी भूलने की आदत से, या आदत ना सही लेकिन भूलने के कारण कुछ ऐसी मजेदार बातें हुई हैं या किसी की डांट खाई है, तो सवाल के जवाब तो बड़े मजेदार आ रहे हैं। प्रमोद चिंचोड़कर कहते हैं कि इन्हें तो भूलने की बहुत ज्यादा आदत है, इनकी जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर घर पर भूल जाते हैं और निकल जाते हैं, गाड़ी की चाबी कई बार भूलते हैं, और इनकी ये आदत है कि वो चीज़ें कहीं भी रख देते हैं यहाँ वहाँ, तो अक्सर वो भूल जाते हैं और इस बात पर उन्हें घर पर अक्सर डांट खानी पड़ती है। ये तो होगा ही, बिल्कुल होगा। मेहर अरोरा कहते हैं इनका तो किस्सा आज का है। मेहर

कहते हैं कि आज ही वो गए थे मार्केट में, बाइक लेकर गए थे शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग के बाद वो सीधे पैदल घर पर निकल आए, और फिर उन्हें याद आया कि अरे बाइक तो वहीं खड़ी है मार्केट में और उसके बाद क्या हुआ होगा डर से कि अब वो है कि नहीं, तो वो उन्हें सुरक्षित वहां पर मिली। उनका कहना है कि उसके बाद जान में जान आ गई। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, आप में से भी किसी ने शायद ऐसी बाइक हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, जब साइकिल चलाने के दिन होते हैं तो वो भी एक दिन होते हैं ना साइकिल चलाने के, तो भूलकर पैदल निकल पड़े हैं। फिर संजय दर्शन कहते हैं कि इन्होंने मेहमान को बुलाया था, मेहमान आने थे इनके घर पर और खाने के लिए बुलाया था, और ये बात उन्होंने घर पर बताई ही नहीं थी, वो भूल गए थे घर पर बताना, और घर का जो रोज़ का खाना था वो बन चुका था, और इन्होंने तो मेहमान बुलाए थे वो खाने पर बुलाए थे। तो फिर बातों में समय बिताकर तब तक खाना बनाया गया, और वो फिर सब अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया था कि रोज़ का खाना भी बन चुका था और मेहमानों के लिए ख़ास भी कुछ बनाया था। तो जो भी बात हुई थी वो उन्होंने बता दी। और इसके बाद विजेंद्र घाटोल कहते हैं कि वो अक्सर कुछ ना कुछ भूलते ही हैं, बाहर कुछ भी लाने के लिए जाते हैं वो भूल जाते हैं कि क्या क्या लाना था, तो सामान अक्सर वो भूल जाते हैं, और घर लौटते ही बिल्कुल डांट तो खानी ही है ऐसा होने के बाद। बात अगर हमेशा की हो जाती है ना तो फिर डांट भी हमेशा की हो जाती है, लेकिन फिर उस डांट के रंग धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगते हैं कि नहीं क्योंकि रोज़ रोज़ कैसे भूलते हो, ये एक बात बहुत गुस्सा देने वाली होती है कि अरे ऐसे कैसे, ये क्या बात है कि रोज़ रोज़ भूलोगे। तो आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है या होता है अक्सर तो हमें बताइए 8657661071, 8657661071। आपको बताना है कि आपकी भूलने की आदत, और अगर आदत नहीं भी है फिर भी अगर आप कुछ भूलते हैं तो उसे क्या क्या मज़ेदार बातें होती हैं या डांट खानी पड़ती है।

सुन रहे आप कार्यक्रम हम तुम बलकरण वर्मा। कहते हैं कि वैसे तो भूलने की आदत है नहीं इनको, लेकिन फिर भी कुछ भूल जाते हैं और थोड़ी देर बाद याद आता है, लेकिन जब याद आता है तब तक किसी ना किसी ने उस बात को छेड़ा होता है, वो जिक्र कर दिया होता है कि अरे तुम इसे भूल कैसे गए, तो इन्हें बड़ा अफसोस होता है। दीपा पालकर कहती हैं कि वो तो एक लिस्ट बना लेती हैं तो उससे क्या होता है कि भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या जीरो हो जाते हैं, लेकिन वो लिस्ट अगर आपने कहाँ रखी आपको याद नहीं आए तो ऐसा भी होता होगा कि चलो लिख लेते हैं, लेकिन वो लिख कर कहाँ रखा है। इसीलिए अभी तो अपने पास मोबाइल है जो सब कुछ कर देता है, लेकिन उसमें अगर भूल गए इसलिए वो मैसेज ही डिलीट कर दिया जिसको भी भेजना है, या फिर अपनी कोई ग्रोसरीज की लिस्ट ही बना चुके हो तो वो डिलीट कर दी गलती से, क्योंकि याद नहीं है कि वो लाना था नहीं लाना था, ला चुके हैं क्या हुआ है पता नहीं है जो भी है पर उसे डिलीट कर दिया आपने, तो फिर तो हो गया ना। हाँ तो डांट तो खानी पड़ती है, और ऐसे में ये भी होता है कि अरे क्या क्या लिखा था उसमें वो याद नहीं आ रहा है, तो चलो अब दोबारा लिस्ट बनाने को बैठो, ऐसा भी होता है। सो अभी तो समय ख़त्म होने को आया है, तो फिर भी गाने और मैं दो सुना पाऊंगी शायद, हो जाए।

7:56 का वक्त है और इजाजत लेने का वक्त हो चुका है, हम तुमको समेटने का वक्त हो चुका है। हमें जिन्होंने जवाब भेजे उनके तो नाम उनके जवाब के साथ हमने बता दिए हैं, और इनके अलावा जिनके सिर्फ हमें नाम ही बताना मुश्किल नहीं था या नाम ही बताना पॉसिबल है मैं कहूँगी एक्चुअली, तो उनके मैं नाम बताना चाहूँगी। दत्ता केदार पंढरपुर से, दत्तात्रेय अड़त वेड़ापुर से, डॉक्टर अंजुम मुंबई से, हीरामणि वर्मा महाराष्ट्र कीर्तनपुरी गोस्वामी, संजय पाटिल, हितेंद्र दास, अश्विन पाटिल, अजय साखरे, आकांक्षा सिन्हा, दिग्दर्शन और कविता, और ऐसे बहुत सारे नाम जो अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, समय की सीमा है तो हमें रुकना होगा। और बता दूँ आपको कि आज आपने बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जो आपके मैसेजेस आए और बहुत ज़्यादा ये संगीत जो आप पसंद करते हैं तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। बहुत सारे ये गाने जो आप इंजॉय करते हैं उस समय के, तो ये गाने ज़्यादा से ज़्यादा प्ले करेंगे, ये कोशिश हम करेंगे। फिलहाल शुभांगी चाहेगी आपसे इजाज़त। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रॉक विद चौक, बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए। 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, थोड़ा सा बस इंतज़ार और उसके बाद ठीक 8 बजे रॉक विद चौक।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: Let's go, girls.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने में मदद मिली। आजादी के बाद पहली बार मालवाहक पोत असम से ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते बांग्लादेश रवाना। 80 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग फिर शुरू। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समझौता। क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए राज्य में 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। और जर्मनी तथा अमरीका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए नोबेल चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी एफ्टा देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पाहमला ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला से भेंट की। डॉक्टर जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पाहमला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। भारत और स्विट्जरलैंड रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। इसमें रक्षा प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग के बीच सहयोग शामिल है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि स्विट्जरलैंड की कंपनियां मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत में रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन और विकास कर सकती हैं। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई समझौते और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए।
2: The MOU on Migration and Mobility Partnership.
3: दोनों पक्षों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी, युवा पेशेवरों का आदान प्रदान और गतिशीलता से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा स्विस नेशनल साइंस फाउंडेशन के बीच आशय पत्र और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच कार्यान्वयन समझौता हुआ।
2: And Department of Science and Technology, our TST.
0: भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
4: प्रधानमंत्री मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बीच बातचीत बहुत व्यापक रही। उन्होंने भारत स्विट्जरलैंड संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नवाचार एवं AI, रक्षा उत्पादन और परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने शांति, कूटनीति और वैश्विक संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। दोनों नेताओं ने दुनिया में चल रहे संघर्ष की स्थिति पर भी चर्चा की। यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नई दिल्ली कूटनीतिक समाधान के पक्ष में है। भारत ने इस मामले का कूटनीतिक समाधान तलाशने में स्विट्जरलैंड की भूमिका की भी सराहना की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की बहुत सराहना की कि यह युद्ध का युग नहीं है बल्कि शांति का युग है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि विकासशील देशों को उम्मीद है

0: कि भारत विश्व मंच पर उनकी चिंताओं को मजबूती से उठाएगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल आर्थिक सम्मेलन में कहा कि भारत विकासशील देशों की खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से जुड़ी चिंताओं के प्रति सजग है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ जुड़ने की भारत की व्यापक नीति अमरीका, रूस और चीन सहित विश्व के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत अब सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बल्कि नई तकनीक बनाने वाला देश बनना चाहता है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में आज उन्होंने कहा कि एआई ने काम करने, लेन देन और फैसले लेने के तरीकों को बदल दिया है। श्री सिंधिया ने कहा कि टेलीकॉम नेटवर्क आज डिजिटल हाईवे बन चुका है और डेटा एआई अर्थव्यवस्था का ईंधन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और public@airnewsalerts को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के डिब्रूगढ़ से बांग्लादेश के लिए मेथनॉल ले जाने वाले पहले मालवाहक पोत को झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे लगभग 80 वर्ष बाद ब्रह्मपुत्र नदी को वैश्विक व्यापार मार्ग के रूप में फिर से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पहल से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीधा, पर्यावरण अनुकूल और किफायती व्यापारिक गलियारा शुरू हो जाएगा।
2: भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई जब मिथानॉल की एक खेप डिब्रूगढ़ स्थित बोगीबिल टर्मिनल से बांग्लादेश के ढाका स्थित पंगाव बंदरगाह के लिए रवाना हुई। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कार्गो यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह टर्मिनल क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा। उन्होंने घोषणा की केंद्रीय सरकार बोगीबिल टर्मिनल पर 200 करोड़ रुपए की लागत से शिपिंग क्षेत्र के लिए एक नए कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगी। यह केंद्र अगले 10 वर्षों में असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा जिससे उन्हें समुद्री और शिपिंग उद्योग में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा भी वर्चुअल माध्यम से इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: पश्चिम बंगाल में अगले 2 वर्ष में 4 नए हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आज कोलकाता में नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि बागडोगरा में एक नया टर्मिनल भी बनाया जाएगा।
3: आज MOUs में हमने 4 नए एयरपोर्ट बनाने की लक्ष्य हमने रखा है। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक हसीमारा और कलाईकुंडा में जो सिविल एनक्लेव्स बनाने का, वहाँ पे 2700 मीटर का ऑलरेडी उपस्थित रनवे है जिससे कि दूर की कनेक्टिविटी भी वहाँ से हो सकती है। उसके साथ ही बालूरघाट में जहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी लैंड है, वहाँ पे भी हम जो उपस्थित स्ट्रिप है उसको भी एक्सपैंड कर वहाँ से भी एयर ऑपरेशंस को शुरू करने का MOU में शामिल किया है।
0: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार से कोलकाता से यूरोपीय शहरों के लिए सीधी उड़ान शुरू करने और आंदल से प्रमुख गंतव्यों तक पहुंच बढ़ाने का आग्रह भी किया गया है। उन्होंने अयोध्या, तिरुपति और अमृतसर के लिए भी सीधी उड़ान शुरू करने की मांग की। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को स्वीकृति नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल

0: सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने आकाशवाणी को बताया कि समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थियों को शामिल होने की संभावना है।
1: इस दीक्षांत समारोह में वर्ष 2024, 2025 और 2026 इन तीन वर्षों के सर्वश्रेष्ठ तीन विद्यार्थियों को उपराष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल दिलाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष में जो नामित मेडल है विभिन्न लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है 20-20-20 यानी 60 बच्चों को हम गोल्ड मेडल देंगे, 240 PhD स्कॉलर्स को PhD का सर्टिफिकेट देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा की मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत के जरिए इस परिकल्पना को किस तरह साकार किया गया।
2: 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में आधुनिक परिवहन व्यवस्था की अहम भूमिका है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ट्रेन देश के अलग अलग शहरों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक रेल सेवा प्रदान कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत फरवरी 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। पिछले साल नवंबर में वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
3: वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है जिस पर हर भारतीय को गर्व है।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के गौरांग शुक्ला ने वंदे भारत ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि यह ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाती है।
4: वंदे भारत आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। रेलवे के आधुनिकीकरण, स्वदेशी तकनीक और बुनियादी ढांचे में सरकार के निवेश ने वंदे भारत को भारत की तेज, स्मार्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बनाया है।
2: भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को देश के अलग अलग शहरों के बीच बेहतर रेल सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसे अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है। इस समय देश भर में 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं और देश के प्रमुख रेल मार्गों पर संपर्क को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। इस वर्ष का नोबेल चिकित्सा पुरस्कार कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में आज इसकी घोषणा की गई। एक रिपोर्ट।
5: तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। ऑप्टोजेनेटिक्स ऐसी तकनीक है जिसमें प्रकाश की मदद से मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीक से जीवित मस्तिष्क में किसी खास तंत्रिका कोशिका को सक्रिय या निष्क्रिय करना संभव है। इससे वैज्ञानिकों को मस्तिष्क में याददाश्त, भावनाओं और व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चैन लारोडोप्सिन्स के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्ल डाइसेरोथ अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग, मनोचिकित्सा और व्यवहार विज्ञान के प्रोफेसर हैं, जबकि पीटर हिगमैन जर्मनी के बायोफिजिसिस्ट और जॉर्ज नागेल न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में डिजिटल युग में ई कचरे की चुनौतियां, समाधान और भविष्य की कार्य योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और आवागमन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के नए अवसर तलाशने और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत की व्यापक नीति से

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमलान के बीच आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इससे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: राष्ट्रपति पहमलान ने कहा कि यह यात्रा दोनों देश

देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से मुलाकात की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामलान का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क सहित कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामलान से भेंट की। डॉ. जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति पहामलान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ेगा। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि SIR के फॉर्म 6 से जुड़ी घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार में SIR से संबंधित आदेश पिछले वर्ष 24 जून को आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। आयोग ने बताया कि इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने इस वर्ष 27 मई के अपने फैसले में भी बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार सिंह को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। न्यायिक अधिकारी गुरविंदर पाल सिंह को दिल्ली उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार कार्ल डाइसरोथ, पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में नोबेल असेंबली में ने आज इसकी घोषणा की गई। तीनों वैज्ञानिकों को लाइट गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स से जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए ये सम्मान मिला है। पीटर हिगमैन और जॉर्ज नागेल ने चेनरो रोडोप्सिन नाम के प्रोटीन की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम वेस्टइंडीज से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीतने के बाद अब 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मैच कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर तन्हा क्यों हो तुम। मैं मुस्कुराई और कहा, तन्हा कहाँ हूं मैं, मेरे अंदर कहानियां सांस लेती हैं, यादें हैं जो खामोश नहीं होती, कुछ अधूरे ख्वाब हैं जो सोते हुए भी जागते रहते हैं, कुछ दुआएं हैं जो होंठों तक नहीं आई, कुछ दुख हैं जो मैंने संभाल कर रखे हैं, और कुछ खुशियां हैं जिन्हें मैंने शोर से बचा रखा है। मैं हर दिन इन्हीं सब के साथ जीती हूं। तन्हाई सिर्फ उनके लिए खामोशी है जो खुद को सुनना नहीं चाहते। खुद को सुनती हूं तो बहुत कुछ महसूस करती हूं, कुछ ऐसी बातें जो मैं कहना नहीं चाहती, कुछ ऐसी कहानियां जो मेरे इर्द गिर्द तो हैं

ये जो लफ्ज है करार, जिसको नहीं आता इसका एहसास वही कर सकता है। कहते हैं कि दीवारों दर तो हैं मगर वो बात कहाँ है, दीवारों दर तो हैं मगर वो बात कहाँ है, बिना तेरे इस घर में वो जन्नत की सुबह वो हसी रात कहाँ है। पत्थर की इमारत को घर नहीं कहते मेरे हमदम, जहाँ तू ना मुस्कुराए वहाँ खुशियों की सौगात कहाँ है। तेरी आहटों से गूंजती है ये सूनी दहलीजें, तू चुर उठ जाए तो इन कमरों में जज्बात कहाँ है। धूप की तलखी भी यहाँ साई की तरह लगती है, तेरी जुल्फ जो ना बिखरे तो सावन की बरसात कहाँ है। सजता है आशियां सिर्फ तेरे ही दम कदम से जाना, बिना महबूब के इस मकां की कोई औकात कहाँ है।

तुम जो यूं चुपचाप बैठे हो, दिल के तार खींचते हो, बात बात पर जो ये रुख मोड़ लेते हो, क्या खबर नहीं तुमको कि तुम्हारी इस खामोशी से सांसें मेरी रुकती हैं। माना कि खता मेरी थी, बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, पर इसका ये सिला तो ना दो, आंखों में ये गुस्सा ना पैदा करो। रूठने का हक है तुमको, पर ये दूरी का सफर तय मत करो। तुम जो यूं चुपचाप बैठे हो, क्या तुम नहीं जानते ये खामोशी मेरी सांसें रोक देती है। ये जो रुख मोड़ लेते हो, इससे ये दिल किरची किरची हो जाता है, क्या तुम नहीं जानते।

तुम अपना रंजुगम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये जज्बात हैं, ये एहसासात हैं। और जब बात हो जज्बात की तो जनाब कुछ जज्बात ऐसे भी हुआ करते हैं जिन्हें अल्फाज में कहना आसान नहीं हुआ करता, और कुछ एहसासात ऐसे भी होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और गजल शायद इन्हीं अनकहे जज्बात की तर्जुमानी है, उनकी आवाज है। कभी ये किसी की याद बनकर दिल में उतर जाती है, कभी किसी अधूरे ख्वाब की तरह आंखों में ठहर जाती है। यानी ये कहा जा सकता है कि मोहब्बत का जो जज्बा है वो बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में हम तक पहुंच जाता है, और ये जो जज्बा है इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसे अल्फाज में पिरोने की हमें लगता है ज़रूरत ही नहीं है। वो मोहब्बत ही क्या जिसे अल्फाज का जामा पहनाया जाए।

आप जरा महसूस करके देखिए कि किस कदर खूबसूरत ये जज्बा है, कैसे इसे महसूस किया जा सकता है, या फिर वो कौन से लफ्ज हैं जिससे इसका जो एहसास है उसको महसूस किया जाए। ये किसका तस्वुर है, ये किसका फसाना है, ये किसका तस्वुर है, ये किसका फसाना है, जो अश्क है आंखों में तस्बीह का दाना है। वाकई जनाब, आप इसे बयां कर ही नहीं सकते। वो कहते भी है ना, एक लफ्ज से मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। यहां बात सिर्फ महसूस करने की है, यहां बात अल्फाज की नहीं है। वो बात ही क्या जो कह दी जाए, वो बात ही क्या जिसके लिए अल्फाज ढूंढे जाएं। बात तो तब है बिना कहे बात को समझ लिया जाए।

वाकई जनाब, ये जो घड़ियां सिमट जाती हैं, जी चाहता है कि इनके साथ साथ ही जिया जाए, ये घड़ियां हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन वक्त का काम गुजरना है और वक्त आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ चेहरे भुलाने से भी भुलाए नहीं जाते, कुछ ख्वाब आंखों से कभी मिटाए नहीं जाते। मुलाकातें भले ही कम हो जाएं जिंदगी में, मगर यादों के मौसम कभी पुराने नहीं जाते। मोहम्मद सरफराज आलम लिखते हैं, जो कि हाट दर्शना बाजार, जिला अररिया, बिहार से। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत खूबसूरत। और क्या कहें आपसे इसके अलावा, क्योंकि आपने यकीनन बहुत अच्छा लिखा है और दिल की गहराइयों से आप लिखते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ एम राजकुमार हैं तमिलनाडु से, और ऐप पर हमें सुन रहे हैं। लिखते हैं, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर ग्रेट शोज़। चलिए जनाब, आपको अच्छा लगा और हमें क्या चाहिए इसके अलावा। प्रोग्राम अच्छा रहता है, आपको अच्छा लगता है, दिल की गहराइयों से आप पसंद करते हैं प्रोग्राम को, एक एक लफ्ज़ सुनते हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। शुभ रात्रि मैम, पहली गज़ल गज़ब की, करीब आधा घंटा सुनेंगे बस। राजेश भल्ला, एडवोकेट, कंकर खेड़ा, मेरठ। नींद भी ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये है कि आप तो अब तक भाई सो चुके होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने आधा घंटा ही सुना, कम से कम अपना कुछ वक्त तो आपने हमें दिया। और हमें क्या चाहिए आपसे, क्योंकि अगर आजकल की इस मसरूफ ज़िंदगी में कोई किसी के लिए थोड़ा सा भी वक्त निकाल देता है, तो और क्या चाहिए होता, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल आप आराम कीजिए और पूरी नींद लीजिए। और गज़ल दिल किया है, बेहद पसंद आई, दिल किया चीज़ क्या है, ओके बहुत पसंद आई। फारूक अली ख़ान साहब हमें लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए और प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। गज़लें आपको पसंद आ रही हैं, और हमें क्या चाहिए। और इसके अलावा हमारे साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत शाहकार से आपने शो की शुरुआत की है आपने, जो कि मेरे फेवरेट शायर जनाब शहरयार साहब का लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया। रेखा जी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसे अपनी अदाकारी से स्क्रीन पर जीवंत किया था। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, फिल्म है उमराव जान, और उमराव जान में रेखा की खूबसूरती, उनके अंदाज और उस पर आशा जी की आवाज़ और शहरयार साहब का कलाम, यकीनन बेहद बेजोड़ मजा आ गया। प्रेमचंद प्रेमी जी लिखते हैं ये हमें धामपुर से, बेशक मेरे दिल को और दुखा के जाते वो, एक रस में तलखियां यूं भी निभा के जाते वो, और जिसकी वजह से मैं बिखरा हूं टूट कर, मेरी एक तो खता मुझको बता के जाते वो। बहुत खूब जनाब, बहुत बहुत अच्छा आपने लिखा है, और इसी तरह से आप लिखते रहिए, अच्छा लगता है। और इसके अलावा सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ, लिखते हैं उच्च कोटि की प्रस्तुति और सदाबहार गजल, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, बेहद शुभकामनाएं। और आप प्रोग्राम सुनते हैं और हमें क्या चाहिए, आपकी सोमवार की संध्या, रात्रि और जीवन बहुत शुभ और हो। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिए और अपनी राय हमें आप जरूर भेजा कीजिए, अच्छा लगता है, हम जान सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं। और केपी तोमर जी मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, नमस्ते। तो आपको भी बहुत बहुत नमस्ते तोमर जी, ऐसे ही आप जुड़े रहिए, आप सुनते हैं प्रोग्राम, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम जावेद आलम है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है, आपका नाम जावेद आलम साहब, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमें क्या चाहिए। अब रही बात किसी खूबसूरत सी गज़ल की, तो जनाब वो तो मेरे सामने ही है और मैं सोचती हूँ कि ये गज़ल आप तक पहुँचाऊँ, यकीनन आपको बेहद पसंद आएगी।

तो प्रोग्राम रंगे महफिल आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त अपनी मेज़बान रेशमा के साथ, और यकीन मानिए कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छा आप तक पहुंचाया जा सके, कुछ ऐसी खूबसूरत गज़लें और नगमे आप तक पहुंचाए जा सकें जिसमें आप यकीनन सुकून का एहसास कर सकें। और बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बातें करके, आपके दिल की बातें जानकर। और हमारे साथ हैं फिर से के पी तोमर जी, लिखते हैं यू आर शेपिंग वेल टू बी वन ऑफ द बेस्ट आरजे ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये सचमुच मेरे लिए एजाज की बात है। तोमर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसा सोचते हैं, बहुत आपका धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे साथ कौन जुड़ चुका है, हमारे साथ बहुत सारे और भी लोग जुड़ चुके हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आई नीड योर हेल्प, प्लीज हेल्प मी, आई एम अनवेल। तो बस हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि आप अच्छे हो जाइए जल्दी से, क्योंकि जब आप अच्छे हो जाएंगे तो यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा एहसास होगा कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं वो हमेशा से सेहतमंद रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। अपनी दुआओं से आप और अपने खूबसूरत जज्बात से जो हमें नवाजते हैं, यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल अब वक्त का इशारा कि मैं आपसे यहीं इजाज़त लूँ और वादा करूँ एक और मुलाकात का तो बहुत जल्द आपसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए अपना अच्छे सा ख्याल रखिएगा, और हाँ, मोहब्बतों की चिराग हमेशा रोशन रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है। गुड नाइट, शब खैर।

नमस्कार, रात्रि के 12 बजे है। प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों को खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से एक तरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र और राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद पश्चिम बंगाल में 2 वर्षों के 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत होगा। पंजाब और हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 34 जिलों में उड़नदस्ते तैनात किए हैं। दक्षिणी नाइजीरिया में कल एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 25 यात्री और 7 चालक दल के सदस्य सवार थे। जर्मन

अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज के 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ FM रेनबो मुख्य समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आज आपके साथ दीप्ति। और चलिए, समय हो चला है तो लेकर चलते हैं आपको सपनीले सुनहरे संगीत की दुनिया में जीरो आर शो के संग।

0: पायल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें वादा किया गया है, क्षमा कीजिएगा, दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैरकानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। केंद्र और राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद पश्चिम बंगाल में 2 वर्षों में 4 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क मजबूत होगा। दिल्ली परिवहन निगम में महिलाओं के मुफ्त यात्रा के लिए अब तक 19,05,889 पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जर्मन और अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मिजोरम सरकार ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों लाल रेमसी ग्यामी और लाल थांग तलुआंगी के लिए 40-40 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। और भारत और वेस्टइंडीज के 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

नमस्कार, रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो से मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कल बुधवार से बिहार में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की सुनवाई के लिए 2 दिन का शिविर आयोजित करेगा। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद मम्मादोव पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई और क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। जर्मन और अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मिजोरम सरकार ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों लाल रिमसियामी और लालथा तलुआंगी के लिए 40-40 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है और भारत और वेस्टइंडीज की 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

एफएम रेनबो पर स्वागत करते हैं हम आपका। आइए चलते हैं लेकर आपको उन नगमों की दुनिया में जो भुलाए ना बने।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

नमस्कार लीजिए, अब सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 2रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैरकानूनी रूप से और एक तरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से त्योहारों के दौरान मिलावटी भोजन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि फ्लाई दुबई की 37 उड़ानों से 2 से 5 अक्टूबर के बीच 7479 यात्रियों को तेल अवीव भेजने का काम पूरा हो गया है। रोमानिया में भारतीय दूतावास ने बताया है कि काला सागर में व्यापारिक जहाज MV रोयाद ममादो पर हुए हमले में 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई है और क्रू मेंबर में शामिल 3 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। जर्मन और अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज की 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:04:03। और लीजिए, अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कहिए साथियों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खूबसूरत से गीतों की ये माला। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक में आना लीजिए इन गीतों का।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
2: Decently pleased, I would say, but I think there are still.
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक। Rainbow 102.6 पर।

लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। भारत और स्विट्जरलैंड ने परिवहन प्रौद्योगिकी अवसंरचना और गतिशीलता में सहयोग को मजबूत करने, रक्षा सहयोग के नए रास्ते तलाशने तथा परमाणु ऊर्जा में सहयोग को गहरा करने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन

इनके हिमाचल प्रदेश दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे बिलासपुर स्थित एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की आधारशिला रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उन आरोपों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR के फॉर्म 6 में गैर कानूनी रूप से और एकतरफा बदलाव किए हैं। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 3 हफ्ते के लिए टाल दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से त्योहारों के दौरान मिलावटी भोजन के खिलाफ विशेष अभियान चलाने को कहा है। संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि फ्लाई दुबई की 37 उड़ानों से 2 से 5 अक्टूबर के बीच 7479 यात्रियों को तेल अवीव भेजने का काम पूरा हो गया है। जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों को मस्तिष्क के गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली नई तकनीक विकसित करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:04 और लीजिए अब लेकर आए हैं आपके लिए कार्यक्रम सारे गामा। मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आनंद लेते हैं इन गीतों का।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।